0: Vande Mataram.
1: Vande Mataram, Sujalam, Sufalam.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति

समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी

0: इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

0: संतोष परम सुख है, वे बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की अवस्था से अधिक जुड़ा है। किसी के पास बहुत कुछ होते हुए भी मन अशांत हो सकता है और किसी के पास सीमित साधन होते हुए भी हृदय में गहरी शांति हो सकती है। फर्क केवल दृष्टि का है। जब हम हर समय ये देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है, तब अपने जीवन की सुंदरता दिखाई देना बंद हो जाती है। संतोष हमें अपनी यात्रा पर लौटाता है। वह कहता है, जो मिला है उसे सम्मान दो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो करना है उसे ईमानदारी से करते रहो। यही भाव मन में कृतज्ञता जगाता है और जीवन को हल्का बनाता है।
1: चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर ही हमारी सहायता करते हैं। प्रभु भक्ति बिना जीवन का कोई मोल नहीं। निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले मनुष्य के सभी कार्य ईश्वर की कृपा से संपन्न हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 231।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूं जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहां आया हूं। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हिम गुंजन गीतों का कारवां। ये कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर होगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:00 कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुनो सखी। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 12:30। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिलीज किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन सैर सपाटा। ये विषय रहेगा आज के युवा मंच कार्यक्रम का। हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:25 पर सुरमई सांझ। ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:05 पर। शाम 6:30 पर मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय रहेगा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। 8:00 सुनिएगा विविध संगीत कार्यक्रम होगा सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। गजल एवं पार्श्व गायक जगजीत सिंह पर केंद्रित होगा आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम। आप सुन सकेंगे 9:15 पर ताम गीता दी। कार्यक्रम का लुत्फ लीजिएगा 9:30 पर। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9:50, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से ही रिलीज किया जाएगा कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:10 पर। सुबह 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिलीज किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00 शाम 5:00 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 शाम 5:05 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 न्यूज़ @9।

0: तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्विस राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं 5 सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावत् जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे च परस्पर सम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीये दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500+ छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 40+200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIR न्यूज़ अलर्ट्स इत्यनुगच्छन्तु।
1: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु 5 विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागांव लोकसभासने च अद्य शांतिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे संपादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचल प्रदेशस्य 3-दिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संजेतना प्रकटिता। विभागेन अनेन संसूचितं यत् आगामी दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्याभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताभि

0: तटस्य मुख्यस्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यमुद्देश्यं हुती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पञ्चस्पर्धानाम् अस्याः T20 श्रृङ्खलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणम् अद्य लखनौनगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे सायं 7 वादनात् प्रारप्स्यते। अग्रिमः स्पर्धा तावत् राञ्ची, इन्दौर, हैदराबाद, बेङ्गलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब

0: इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 वे एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place at Madhuran Takam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattan Chowri in Puducherry, and Rejinagar and Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Naugaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by-election to a lone seat in West Bengal will be held on the 16th of this month. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. The President will also travel to Manali, where she will visit the Hidimba Temple and the Atal Tunnel Rohtang tomorrow. Security measures have been stepped up in hotel areas along major roads and in the vicinity of event venues. Defence Minister Rajnath Singh will mark the delivery of the 2000 Aero engine by Koraput Division of Hindustan Aeronautics Limited in Odisha today. The Defence Ministry said the event will also highlight the establishment of a second production line for Shakti engines with an investment of over 200 crore rupees. The Defence Minister will also launch Fleet Support Ship 1, FSS-1, and lay the keel of Fleet Support Ship 5, FSS-5, at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. India and Switzerland have inked 5 agreements following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi yesterday. These agreements are on migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas, letter of intent between Department of Science and Technology and Swiss National Science Foundation, and implementation arrangement for cooperation in innovation, technology, transfer and entrepreneurship. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated Swiss President Guy Parmelin's commitment to India-Switzerland relations. India has voiced support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity.

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार के साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, सपने हम सभी देखते हैं और इन सपनों को आधार बनाकर भविष्य की योजनाओं पर कार्य भी करते हैं। जिंदगी हमें अवसर प्रदान करती है, जिसने भी वक्त की कदर कर इन अवसरों का लाभ उठा लिया, उसने जीवन में वो प्राप्त कर लिया जिसका ख्वाब उस व्यक्ति ने कभी देखा था। तो दोस्तों आइए, एक नई भोर, कुछ नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए, जागिए और निकल जाइए अपने सपनों को साकार करने की दिशा में।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 8 बजे तक आप हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अब खोलते हैं जानकारियों का पिटारा। शुरुआत करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। वहां से 1862 की हम बात करते हैं। आज के दिन भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और इसे 1 जनवरी से लागू कर दिया गया। 1957 में आज के दिन सोवियत संघ ने नोवाया जेमेलिया में परमाणु परीक्षण किया। 1980 में गुयाना ने संविधान को आज के दिन अंगीकार किया था। 1987 में आज ही के दिन फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ। 1994 की अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा आज के दिन ही की थी। आज ही के दिन 1999 को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में प्रारंभ हुआ। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार आज के दिन दिया था। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1893 में आज के दिन जन्म हुआ था गणित

वित्त एवं भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का इनके विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। आपको बता देते हैं 1922 में आज ही के दिन मथुरा के प्रसिद्ध संत जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था कृपालु महाराज, उनका जन्म आज के दिन हुआ। आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना का जन्म 1946 में हुआ था। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए ये भी आपको बता देते हैं। 1986 में आज के दिन राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और समाज सेवक गोकुल भाई भट्ट का निधन हुआ। 1974 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ और देश के पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन का निधन हुआ। आज के दिन 2007 में जाने माने भारतीय कवि लेखक भाषाविद न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का निधन हुआ। और 2021 में आज ही के दिन छोटे पर्दे के विख्यात कलाकार अरविंद त्रिवेदी का निधन आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन दोस्तों 1858 में नाना साहब का निधन हुआ। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे नाना साहब। और कार्यक्रम में एक बार फिर से रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: एक बार और।
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
9: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, कार्यक्रम में जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज मेघनाद साहा की जयंती है। मेघनाद साहा गणित एवं भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 6 अक्टूबर यानी आज के दिन 1893 को ढाका से लगभग 45 किलोमीटर दूर शायराटोली गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे जो चाहते थे कि उनका पुत्र व्यवसाय में उनकी सहायता करे, पर होनहार मेघनाद को ये मंजूर नहीं था। वर्ष 1917 में मेघनाद साहा कोलकाता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए, जहां वह क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते थे। वहीं पर उन्होंने उच्च अनुसंधान कार्य किया और DSC की उपाधि प्राप्त की। तारा भौतिकी पर निबंध लिखकर उन्होंने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किया। SN बोस के साथ मिलकर उन्होंने आइंस्टीन और विंकोविस्की द्वारा लिखित शोध पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वर्ष 1919 में अमेरिकी खगोल भौतिक जर्नल में मेघनाद साहा का

0: शोध पत्र छपा। इस शोध पत्र में उन्होंने आयनीकरण फार्मूला को प्रतिपादित किया। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में ये एक नई खोज थी जिसका प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। एक खगोल वैज्ञानिक के साथ साथ मेघनाथ साहा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय कैलेंडर के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। मेघनाथ साहा संसद के सदस्य भी थे। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना भी की थी। मेघनाथ साहा के अथक प्रयासों से ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई थी। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने तारों के ताप और वर्ण क्रम के निकट संबंध के भौतिकीय कारणों की खोज की थी। इसी खोज के कारण 26 वर्ष की आयु में ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। प्रगतिशील विचारों के धनी मेघनाथ साहा के प्रयत्नों से ही भारत में भौतिक विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। प्रतिभा के धनी मेघनाथ साहा का 16 फरवरी 1956 को निधन हो गया।
1: अंदाज वही कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।

0: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, बरसात का मौसम तो जा चुका है, लेकिन क्षेत्र में सर्पदंश यानी स्नेक बाइट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम प्रयास कर रहे हैं फोन लाइन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कांगड़ा पद्मश्री डॉक्टर ओमेश भारती से बात करने की। हेलो जी, हमारा प्रयास जो है वो जारी है, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए।
4: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
5: सौगात नई, कुछ नए तराने,
6: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
4: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
5: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
6: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
4: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
5: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
6: जो पहुंचे दिल से दिल तक।

0: जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश भारती पद्मश्री कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। डॉक्टर साहब, प्रदेश में सर्पदंश यानी स्नेक बाइट के मामले लगातार देखे जा रहे हैं, ऐसे में जिला कांगड़ा का स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है?
1: देखिए, अब तो स्नेक बाइट सीजन पीक पे है और बड़ी सारी घटनाएं स्नेक बाइट की हुई हैं, और हमने हर पीएससी तक जो है, जो इसके इलाज होता है एंटी स्नेक विनम से, वो दवाई जो है वो हर पीएससी तक पहुंचाई है। एम्बुलेंसेज में भी कोशिश कर रहे हैं कि उनमें भी हम एंटी स्नेक विनम रखें ताकि जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो सके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार स्नेक बाइट से जो डेथ होती है उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि विभाग जो है वो सारे काफ़ी हम मुस्तैद हैं, और जहाँ भी पता लगता है स्नेक बाइट एकदम फॉलोअप किया जाता है, पेशेंट को ट्रैक किया जाता है, और जहाँ आगे रेफर हो रहा है वहाँ भी बताया जाता है कि पेशेंट आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों से, सांपों से काटने के बाद जो डेथ की घटनाएं वो काफ़ी कम हुई।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सी भ्रांतियां होती हैं, कई लोग सर्पदंश के स्थान को कसकर बांध देते हैं या मुंह से खींचकर, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, विष निकालने का प्रयास करते हैं, ये कितना घातक हो सकता है?
1: ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि जहां पे सांप ने काटा है उस जख्म को हिलाना, उसको छेड़ना

0: उसको कुछ भी करना, उसकी जगह काटना, चूसना, बांधना, ये सारी चीजें जो हैं वो घातक हो सकती हैं। और कई बार तो जो अंग है, जो जहाँ पे कटा है उसको काटना भी पड़ सकता है, और कई बार तो जान भी जा सकती है।
1: जी
0: इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी ऐसी काटने की जगह को काटने की, चूसने की, बांधने की, या ओझाओं के या मंदिरों में जाने में समय बर्बाद करने की कोशिश ना करें। और जैसे ही स्नेक बाइट हो, वैसे जैसे हार्ट अटैक होता है, गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि जहर को जहर मारता है, तो इसकी दवाई जो है जो जहर से ही बनती है, तो
1: जी
0: एंटी स्नेक विनम, तो उसी से इसका इलाज होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, सर्पदंश यानी स्नेक बाइट होने पर संबंधित व्यक्ति या उसके परिजनों को क्या करना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा
0: पहले तो
1: सके?
0: मैं ये कहूंगा कि उनको हौसला रखना चाहिए कि 70% सांप जो है जहरीले नहीं होते।
1: जी
0: और दूसरा, जहाँ काटा है उस अंग को हिलाएं ना, ना ही उसको छेड़ें, और ना ही उस व्यक्ति को ज्यादा चलने दें, क्योंकि ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा विष जो है जल्दी फैलेगा, और ज्यादा टेंशन रहेगी तब भी, ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगी तब भी विष फैलेगा। तो उसको जो है उठाकर गाड़ी में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके आए या 108 को कॉल करें। तो यही है इसका जो फर्स्ट एड जो आम आदमी कर सकता है, बाकी इलाज तो इसका हॉस्पिटल में ही होता है।
1: जी
0: और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि स्नेक बाइट हो जाए तो उसको गैस ना मारें कि ये जहरीला हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैं इसी गैस में कई लोगों की जान जा चुकी है, तो लगता है कि सांप ने काटा है, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ये हॉस्पिटल में हम देखेंगे टेस्ट करके कि ये जहरीला सांप था या नहीं था, या इलाज होगा या नहीं होगा, जरूरत है नहीं जरूरत है, तो खुद ना गैस करें कि ये जहरीला था या नहीं था, जाने की जरूरत है कि नहीं है, हॉस्पिटल जाना है जब भी लगे कि स्नेक बाइट है।
1: जी हम लोग आस्थाओं से जुड़े हैं और अमूमन तौर पर होता क्या है कि लोग झाड़ फूंक की तरफ भी जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कितना घातक है ये?
0: देखिए इसमें जैसे मैंने कहा गोल्डन आवर, जितना टाइम ज्यादा बीतता जाएगा जो जहरीला सांप है उसका जहर उतना ही ज्यादा चढ़ता जाएगा। तो हमारे यहाँ कई बार लोग मंदिरों में और इधर उधर जो भागते हैं, आपको मैं ये बताऊं कि 70% सांप जहरीले नहीं होते, और 10% सांप जो जहरीले होते हैं वो ड्राई बाइट होता है, यानी कि उन्होंने दंश मारा है लेकिन जहर नहीं डाला। तो इस तरह से 80% के लगभग सांप ऐसे हो गए जो जिनसे कोई मरेगा नहीं। तो ऐसे लोग तो झाड़ फूंक से मंदिरों में जाके ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो 20% बचे, जो बाकी जिनमें जहर गया है, उनका बचना मुश्किल है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि 80% लोग बच गए तो यहाँ जी सब बच जाते हैं, तो वो एक धारणा जो है वो लोगों को समझनी पड़ेगी कि 70% जहाँ सांप जहरीले नहीं होते, 10% में सांप जहर नहीं डालता, तो 80% लोग तो मंदिर में जाएं या कहीं भी चले जाएं वो ठीक ही रहेंगे या घर पे रहें, लेकिन जो 20% हैं वो लोग जो हैं उनमें जहर जब चढ़ेगा तो वो यदि टाइम से ना पहुंचे तो मृत्यु निश्चित है।
1: जी डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाता है, स्नेक बाइट हो जाता है, तो वह कहाँ संपर्क कर सकता है? क्या विभाग द्वारा इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है?
0: नहीं, इसमें हेल्पलाइन की जरूरत नहीं है। 108 जिसमें हमने कहा कि 108 में कई जगह पर एंटी स्नेक विनम भी रखा गया है, तो वो सीधा 108 को कॉल करें और सीधा हॉस्पिटल आए, तो वो हेल्पलाइन ही है, 108 इज ए हेल्पलाइन।
1: जी डॉक्टर उमेश भारती, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस सर्पदंश के विषय में दी। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
1: जी दोस्तों, ये थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कांगड़ा डॉक्टर उमेश भारती। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, किसी भी तरह का स्नेक बाइट यानी सर्पदंश यदि हो जाता है तो तुरंत अस्पताल जाएं, व्यर्थ समय ना गंवाएं, क्योंकि शुरू का जो समय है वो बहुत कीमती होता है, तभी मरीज की जान बच सकती है यदि समय पर अस्पताल पहुंचा जाए।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में कुछ बातें कुछ जानकारियां भी बाकी हैं, जुड़े रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों कार्यक्रम में अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।

भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। इस सहमति में रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग भी शामिल हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्डियन 2026 पिछले रोज उत्तराखंड में शुरू हुआ। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में आपसी समन्वय, समझ और बेहतर सहयोग बनाना है। महाराष्ट्र में पानी की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर से 10% पानी की कटौती करने का फैसला किया है। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने सभी शहरी निकायों को इसके निर्देश जारी किए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनू राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की एक मादा चीता ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें 41 भारतीय मूल के चीते शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ये घटना भारत में चीतों की अगली पीढ़ी के उत्थान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। हिमाचल की

0: करें तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज से मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रदेश में आज से 9 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर आंधी, गरज, चमक और वर्षा का दौर रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों आज 6 अक्टूबर है। आज के दिन जन्म हुआ था हिंदी सिने जगत के एक महान नायक विनोद खन्ना का। विनोद खन्ना का जन्म ऐसे अभिनेताओं में शुमार था जिन्होंने शुरुआती दौर में तो विलेन का किरदार निभाया था, लेकिन बाद में नायक बनकर असंख्य फिल्म प्रेमियों के दिलों पर राज करने लगे। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर यानी आज के दिन 1946 को पेशावर में हुआ था। विभाजन के बाद इनका परिवार मुंबई में बस गया। वर्ष 1968 में आई सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। विनोद खन्ना ने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, मस्ताना, मेरा गांव, मेरा देश, मेरे अपने, दयावान, कुर्बानी, परवरिश जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। विनोद खन्ना अपने समय के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में से एक थे। अपने करियर के शिखर दौर में विनोद खन्ना अचानक अभिनय को विदा कहकर आध्यात्मिकता की राह पर चले गए। फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना ने हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी दमदार अदाकारी की। विनोद खन्ना ने 1998 में राजनीति में पदार्पण किया और गुरदासपुर से चुनाव जीतकर पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। आज विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के कारण हजारों फिल्म प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं।

दोस्तों आजकल हम वन्य जीव कल्याण सप्ताह मना रहे हैं। विश्व वन्य जीव कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह या वन्य जीव कल्याण सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस को हम विश्व पशु कल्याण दिवस के नाम से भी जानते हैं। ये दिन अस्सीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस भी है, जो कि वन्य जीवों और पशुओं के महान संरक्षक थे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1931 में पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने पशु कल्याण पर एक सार्वभौम घोषणा के नियम एवं निर्देशों के अधीन अनेक अभियानों की शुरुआत की।

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सार्वभौम घोषणा में पशुओं के दर्द और पीड़ा के संदर्भ में उन्हें संवेदनशील प्राणी के रूप में पहचान देने की बात की। इस दिवस या सप्ताह का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना था। पशुओं या वन्य जीवों की कई प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसका प्रभाव समाज और पर्यावरण पर सीधे तौर पर पड़ रहा है।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं।

0: राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
2: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलिमाव भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
3: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने

0: में पहले साल में ही 8 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये बीजिंगम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
2: इन माय ओपिनियन विरिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विरिंगम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
0: बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने था अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिम गुंजन।

0: पिंकी देवी और सखियों को गाया लोकगीत अभी आपने सुना।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
5: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
6: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
5: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: हिमगुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मान सिंह का गाया ये लोकगीत।

0: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
1: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
0: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
2: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
3: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई BP के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
2: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में BP की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
7: आज ही अपना BP चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई BP को कहे अलविदा।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: स्वस्थ हिमाचल मजे
8: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
9: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
10: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
9: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
10: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
11: पापा,

0: मुझे सांप ने काट लिया।
1: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
2: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
3: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: कर्नेल राणा का गाया लोकगीत अभी आपने सुना।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
8: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
8: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
8: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
9: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: हिमगुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुनील राणा का गाया ये लोकगीत।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
1: हिमगुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लीला भंडारी का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिमगुंजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जनसेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है, वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है, और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
2: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति पे जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
1: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है, और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास।

0: उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
1: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो जेसीबी है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
0: जी।
1: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना जेसीबी को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे जेसीबी को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
0: जी।
1: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च न हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर न रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
0: जी।
1: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है इसको मैंने अपने किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
0: बिल्कुल,
1: तब लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
0: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम, जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला ₹1 जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
2: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है, तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है, पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल मिल रहा है और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी।

0: ये जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
1: बिल्कुल
0: वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
1: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताज़ा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं, तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज़्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो यूपीआई ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेहड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह यूपीआई के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए।
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की, जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाए गए, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब एनपीसीआई ने यूपीआई स्टार्ट किया, और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है, वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के ये? और कम से कम 2 बिलियन, मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की बात हम आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं एमबीए की बिटसॉम में एमबीए की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं पे पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपने बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप एटीएम कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने यूपीआई ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं
1: जी जी
2: जितने क्लास में होते हैं या कहीं पर। तो उस हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई, गए आप सब्जी लेने गए तो यूपीआई कर दिया। ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले, उसके पास खुले नहीं होते, तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पे कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा,
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि उन्होंने उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना हो तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी
2: एक बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक।
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम यूपीआई की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन

0: परिवर्तन है, क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज़ को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज़ को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
1: जी। एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है, और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है, और उसमें से जो अपने छोटे एमएसएमईज या उद्यमी हैं उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हों, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हों। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
0: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा, और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है, भारत को जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर, जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थीं, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है?
1: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स हैं उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं, ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड हैं या इनोवेशन वर्ल्ड्स हैं वो भी इस पर अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
0: बिल्कुल, अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक आदि

0: कर एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है, इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं, उससे कैसे इससे मदद मिली है?
1: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने? हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अवसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपियर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इसे अचरज नहीं होता है हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है, उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन
0: जी
1: जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
0: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया, संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
2: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गॉव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहाँ पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में, विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शंस है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है,

0: समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माईगोव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत सराहनीय है। जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले ये होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं। इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और एमएलए लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतनी उनकी पार्टिसिपेशन।
0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है, संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है, और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में, वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
1: एक बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है, जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, और उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
0: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना,

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनीज चला रही हैं। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज़्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज़्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिज़ाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके मैन्युफैक्चर करके उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को जॉइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे MSMEs या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे FTAs भी साइन किए हैं जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
0: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
4: बेजान छतों में जान

0: साल में निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, लीजिए सुनिए देशगान।

107.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 9:50 होने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत, मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तहत कल से सभी संगठनात्मक जिलों में सेवा ज्योति यात्रा करेगी आयोजित, और सिरमौर जिले में HRTC बसों की कमी के कारण लोग परेशान, कई रूट प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर आ रही हैं। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली प्रवास का कार्यक्रम है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को नशे से बचाने और उनकी ऊर्जा को खेल व अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। शिमला में नशे नु ललकार, नौजवानी दी पुकार अभियान की टी शर्ट लॉन्च करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। इस अभियान के तहत 9 अक्टूबर को नालागढ़ में मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करवाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान के तहत निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है। प्रदेश सरकार शिमला जिले के रोहडू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान देश और समाज के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि ये भवन क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक व सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के तहत 7 अक्टूबर को प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों में सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की जाएगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज में सेवा, समर्पण और जनभागीदारी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जन जागरूकता से जुड़ी विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही है और सेवा ज्योति यात्रा इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में सेवा कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसानों के हित में मोदी सरकार हमेशा हिमाचल के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के कृषि विकास के लिए 589.59 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दूसरी

0: किस्त के 64,82,00,000 रुपए जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
2: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
1: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
2: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
3: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला में HRTC बसों की कमी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नाहन डिपो से 17 बसें दूसरे जिलों में शिफ्ट किए जाने से जिले के कई रूट प्रभावित हो रहे हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा नाहन के प्रभारी राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि यदि सरकार ने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई तो आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।
4: हमारे यहाँ जो बसी की प्रॉब्लम है, ये हमारी 10 बसें हमारी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ से शिमला चली गई और 7 डीजल बसें चली गई है। इससे हमारा सारा पहाड़ी क्षेत्र रेणुका जी, ददाहू, कोटा साहब, सिलाई सारा प्रभावित हो रहा है बसों के बगैर, और हमारे बस स्टाफ की कमी है, ड्राइवर कनेक्ट हो गई और आधी बसें हमारी वर्कशॉप में खड़ी है। इस वास्ते सारे प्रशासन से मैं यही दुआ करूँ, जो हमारी बसें गई है ना, इनको सबको वापस किया जाए बहुत जल्दी से जल्दी। इधर हमारा तिलोकपुर का मेला आ गया है, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
0: शिमला जिले में बेघर और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के बचाव और पुनर्वास के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार अभियान का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल देखभाल, उपचार और उचित संस्थान में दाखिला दिलाना है। इसके लिए आमजन और संबंधित हितधारकों को जागरूक किया जाएगा ताकि ऐसे मामलों की सूचना अधिकारियों तक पहुंच सके। प्राधिकरण ने लोगों से सहयोग की अपील की है। HP शिवा परियोजना के तहत मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र में पैदा की गई मौसमी के अच्छे दाम मिलने से किसान उत्साहित हैं। हमारे मंडी जिला संवाददाता ने बताया कि ये मौसमी अब बड़े बाजार में भी दस्तक दे रही है।
5: मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के उठाई और पलोट क्लस्टरों में तैयार हो रही मौसमी अब बड़े बाजारों में अपनी दस्तक दे रही है। HP शिवा परियोजना के तहत तैयार मौसमी की पहली खेप राजपुरा स्थित रिलायंस आउटलेट के लिए भेजी गई है। करीब 2 टन मौसमी की इस खेप में किसानों में उत्साह है। उन्होंने अपने उत्पाद का 40 से 45 रुपए प्रति किलो का अच्छा दाम मिल रहा है। उद्यान विभाग मंडी के अनुसार वर्ष 2020-21 में इन दोनों क्लस्टरों में 64 किसानों की भूमि पर 16,595 मौसमी के पौधे लगाए गए थे। विभाग का कहना है कि बड़े रिटेल आउटलेट तक सीधे पहुंचे किसानों को बेहतर बाजार और आमदनी के नए अवसर मिलेंगे। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारी भी किसानों के साथ रिलायंस आउटलेट जाकर आधुनिक विपणन तकनीकों की जानकारी हासिल करेंगे। मौसमी की यह पहल मंडी जिला में आधुनिक बागवानी और बेहतर किसान आय की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, राष्ट्रपति आज हिमाचल आएंगी, एम्स में बांटेंगी डिग्रियां, अटल टनल का करेंगी दीदार। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिमाचल में शून्य दाखिले वाले 100 सरकारी स्कूल डीनोटिफाई। एंटी हेलगन पर 1 साल की रोक शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी के साथ निजी के संचालन पर भी लगाया प्रतिबंध। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, जुब्बल कोटखाई में लगी एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, प्राइड ऑफ हिल्स में प्रदेश को मिलेंगे 1300 करोड़। दैनिक जागरण की एक सुर्खी है, नौणी में कुलपति कार्यालय के बाहर हंगामा, अपनी सुरक्षा के लिए VC ने बुलाई पुलिस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत, मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग का किया आह्वान।

0: प्रदेश भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तहत कल से सभी संगठनात्मक जिलों में सेवा ज्योति यात्रा करेगी आयोजित। और सिरमौर जिले में एचआरटीसी बसों की कमी के कारण लोग परेशान, कई रूट प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। घड़ी में सुबह के ठीक 10 बजे हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों का कारवां का। आप सभी संगीत प्रेमियों को ज्योति का स्नेह अभिवादन। कहते हैं श्रोताओं कि वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, लेकिन कुछ सुर और कुछ नगमे वक्त को हमेशा के लिए रोक देते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यादों की महफिल अब सज चुकी है और कार्यक्रम का पहला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर पहुंच चुका है। ये आवाज है उदित नारायण की। राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको एक ऐसा गीत जो आज भी हर धड़कन की पहली पसंद है। कुमार सानू की दिलकश आवाज में आपको सुनवा रहे हैं, ये है मुंबई मेरी जान फिल्म से ये खूबसूरत गीत। इंदिवर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत निर्देशन।

0: चांद श्रोताओं, वैसे तो रात में निकलता है लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी गुनगुनाया जाए वह दिल को बहुत सुकून देते हैं। कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में अब लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: अब अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म रंग से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज से सजा ये गीत। सुरेंद्र साथी के खूबसूरत बोल हैं और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

0: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश, कसूर फिल्म से ये खूबसूरत गीत, उदित नारायण और

0: आप जुड़े हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: कार्यक्रम का आखिरी नगमा बाजीगर फिल्म से आपकी नजर कर रहे हैं।

विनोद राठौर की आवाज़ है, अनु मलिक ने धुन बनाई है और खूबसूरत बोल हैं इस गीत में रानी मलिक के।

ये था श्रोताओं कार्यक्रम का आखिरी नगमा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कारवां आपके दिल को जरूर छू गया होगा। आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बलदेव सांख्यान की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर, बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अक्षर सिंह परमार की आवाज से सजा ये लोकगीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति निम्मो चौधरी की आवाज में गाया ये लोकगीत।

0: इसी के साथ हिमाचली कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का।
1: आकाशवाणी

0: संतुलित खाद और उर्वरक।
1: है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के तहत अब से कुछ देर पहले बिलासपुर पहुंची। राष्ट्रपति का एम्स हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य नेताओं ने भव्य स्वागत किया। बाद में राष्ट्रपति एम्स के सभागार पहुंची, जहां उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली प्रवास का कार्यक्रम है, जहां उनका रात्रि ठहराव होगा। कल राष्ट्रपति का हिडिंबा माता मंदिर में दर्शन के बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को नशे से बचाने और उनकी ऊर्जा को खेल व अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। शिमला में नशे नू ललकार नौजवानी दी पुकार अभियान की टी शर्ट लॉन्च करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। इस अभियान के तहत 9 अक्टूबर को नालागढ़ में मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करवाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान के तहत निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार शिमला जिला के रोहडू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान देश और समाज के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि ये भवन क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक व सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लाहौल स्पीति जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत को कांग्रेस सरकार के कामकाज के खिलाफ जनता का स्पष्ट जनमत बताया है। एक बयान में उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 11 में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले से लेकर उप मुख्यमंत्री के गृह जिले और शिमला कांगड़ा समेत कई जिलों में भाजपा समर्थित नेतृत्व का उभरना बड़ा राजनीतिक संकेत है। बिंदल ने इन परिणामों को राज्य सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसानों के हित में मोदी सरकार हमेशा हिमाचल के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के कृषि विकास के लिए 589.59 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दूसरी किस्त के 64.82 करोड़ रुपए जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। सिरमौर जिला में एचआरटीसी बसों की कमी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नाहन डिपो से 17 बसें दूसरे जिलों में शिफ्ट किए जाने से जिले के कई रूट प्रभावित हो रहे हैं। अंतर्राज्य बस अड्डा नाहन के प्रभारी राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि यदि सरकार ने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई तो आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।
2: हमारे यहाँ जो बसी की प्रॉब्लम है, ये हमारी 10 बसें हमारी इलेक्ट्रिकल बसें यहाँ से शिमला चली गई और 60 डीजल बसें चली गई है। इससे हमारा सारा पहाड़ी क्षेत्र रेणुका जी ददाहू कोटा साहब सिलाई सारा प्रभावित हो रहा है बसों के बगैर, और हमारे बस स्टाफ की कमी है ड्राइवर कनेक्ट हो गई और आधी बसें हमारी वर्कशॉप में खड़ी है। इस वास्ते सारे प्रशासन से मैं यही दुआ करूँ, जो हमारी बसें गई है ना इनको सबको वापस किया जाए बहुत जल्दी से जल्दी। इधर हमारा तिलोकपुर का मेला आ गया है, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
1: शिमला जिले में बेघर और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के बचाव और पुनर्वास के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार अभियान का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल देखभाल, उपचार और उचित संस्थान में दाखिला दिलाना है। इसके लिए आमजन और संबंधित हितधारकों को जागरूक किया जाएगा ताकि ऐसे मामलों की सूचना अधिकारियों तक पहुंच सके। प्राधिकरण ने लोगों से सहयोग की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है।

सबसे बड़े खेल मंच तक और वहां से दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों तक। कहीं हिमाचल के धावकों ने इतिहास रचा, कहीं भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगाई। तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी और क्रिकेट में तिरंगा शान से लहराया। और अगर बात एशियाई खेलों की जाए तो भारत की कहानी और भी खास रही। 85 पदकों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे एशिया में अपनी ताकत का एहसास कराया। तो आइए खेलों की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और पलटते हैं सितंबर 2026 के पन्ने। आप सुन रहे हैं खेल जगत, जहां बात होगी हिमाचल के खेल सितारों की, भारत की बड़ी उपलब्धियों की और दुनिया के उन मुकाबलों की जिन्होंने सितंबर महीने को बनाया यादगार। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां सितंबर का महीना खेल उपलब्धियों के लिहाज से बेहद खास रहा। मंडी के जोगिंदरनगर के धावक सावन बरवाल ने एशियाई खेलों की पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। New Delhi 1982 and

0: उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय दर्ज करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और पुरुष मैराथन में भारत के 44 वर्ष पुराने पदक के इंतजार को खत्म किया।
1: बहुत अच्छा फील, बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि इतना सालों बाद मैराथन में एशियन गेम्स में मेडल आया, तो मेरे लिए भी एक स्पेशल मोमेंट है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इंडिया आने वाली यूथ को यही मैसेज है कि सभी एथलेटिक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके इंडिया का नाम ऊंचा करें। काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि बार बार जिस इवेंट में पार्टिसिपेट करते अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी अंदर से काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और काफ़ी सपोर्ट है AFI का और इंडियन गवर्नमेंट का, कि जिससे हम अभी लास्ट 2 मंथ से कोलोराडो स्प्रिंग्स में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, अच्छे ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो काफ़ी उससे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एलीट एथलीट्स से वहाँ पे, जो अच्छे एथलीट्स हैं और 2:03-2:04 के रनर है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि कैसे रेस लगाई जाती है चैम्पियनशिप रेसेस को, तो काफ़ी हेल्प मिली जिससे वही टैक्टिक्स अप्लाई किया।
0: वहीं चंबा की सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर हिमाचल की उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ा, यानी हिमाचल की पहाड़ियों से निकली दौड़ जापान के एशियाई खेलों के ट्रैक तक पहुंची और पूरे देश को गौरवान्वित किया।
2: सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इस बार मैं अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाई हूँ एशियन गेम में, लेकिन मैं नेक्स्ट एशियन गेम में और आने वाले कॉम्पिटिशन में प्रयास करूंगी कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊं।
0: अब बढ़ते हैं हिमाचल की एक और बड़ी उपलब्धि की ओर। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया और इस स्वर्णिम सफलता में हिमाचल की 4 बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुष्पा राणा, ऋतु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। चारों खिलाड़ियों की उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया कि हिमाचल की बेटियां खेलों के मैदान में लगातार नई पहचान बना रही हैं। खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता को राज्य सरकार ने भी सम्मान दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए लगभग 5.25 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार घोषित किए। अब रुख करते हैं एशिया के सबसे बड़े खेल मंच की ओर, जहां भारत की पदक यात्रा ने एक नया अध्याय लिखा। आईची नागोया एशियाई खेलों का समापन 4 अक्टूबर को हुआ और भारत ने 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। भारत के खाते में रहे 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य, कुल 85 पदक। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां देखने को मिली। तीरंदाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती में शानदार प्रदर्शन के साथ क्रिकेट और हॉकी में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अब बात करते हैं उन खेलों की जहां भारत ने स्वर्णिम प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पदक संख्या में महत्व

0: महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: Yeah, I think the objective was to go back to back to make our own piece of Indian history, you know, hockey history, and boys did well over this tournament. Not easy on the back of the World Cup. There were some tough moments in that World Cup, but we bounced back. I think we had a great debrief and team build before we arrived in Japan, and proof's in the pudding, and we were consistent through the seven games and played a good final.
2: And we won.
1: It was more about just getting through the semi-final. Semi-finals are difficult matches, and we started really well, and then the second half we lost our way a little bit, and Pakistan's that kind of team that can hurt you if you make mistakes, and they did. And then we, good teams find a way to win, and we always find a way to beat them, and I don't mean it in a disrespectful way, but we have the belief that we can, and it showed.
0: क्रिकेट में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए।
3: I think they've really done well. I guess a superb team effort. We played in different conditions in Dubai at the Asia Cup, and now coming here in Japan and defending the gold medal, in the Asian Games. Augurs really well for the Indian women's cricket team. I think we put our best foot forward here in Japan.
0: वहीं भारतीय तीरंदाजों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इस खेल में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी में भारत ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक भारत के खाते में आए। एशियाई खेलों की इन सफलताओं ने भारतीय खेल जगत को नई ऊर्जा दी है, लेकिन खेलों का रोमांच सिर्फ एशियाई मैदान तक सीमित नहीं रहा। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। सितंबर के अंतिम दिनों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला शुरू हुई। भारत ने पहले 2 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करते हुए श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली, लेकिन 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर क्लीन स्वीप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वेस्टइंडीज ने शाई होप की नाबाद 162 रन की शानदार पारी की बदौलत भारत के 351 रन के लक्ष्य को हासिल किया। हालांकि भारत ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। क्रिकेट के इस रोमांच के बाद अब समय है दुनिया के दूसरे खेल मैदानों की ओर देखने का। श्रोताओं, घरेलू क्रिकेट से अब एक बड़ी खबर। रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप अपने नाम कर लिया है। टीम ने रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू और कश्मीर को हराया। गेंदबाजी में मुकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि आकाशदीप ने भी उनका अच्छा साथ दिया। ईरानी कप भारतीय घरेलू क्रिकेट में बेहद प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और इसमें प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं की भी नजर रहती है। ऐसे मुकाबले राष्ट्रीय टीम के लिए नए खिलाड़ियों की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं मोटर स्पोर्ट्स की। फॉर्मूला 1 के 2026 सेशन में मैक्स वर्स्टैपन ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। बारिश से प्रभावित रोमांचक मुकाबले में वर्स्टैपन पहले स्थान पर रहे, जबकि किमी एंटोनेली दूसरे और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। इस सेशन में नए तकनीकी नियम लागू हुए हैं, इसलिए टीमों और ड्राइवरों के प्रदर्शन में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। फॉर्मूला 1 के प्रशंसकों के लिए ये सेशन खास रोमांचक बना हुआ है। अब खबर फुटबॉल के मैदान से। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पुर्तगाल के नए कोच जॉर्ज जीसस ने रोनाल्डो के भविष्य और टीम में उनकी भूमिका को लेकर सकारात्मक संदेश दिए हैं। रोनाल्डो अब अपने करियर के अंतिम चरण में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और मैदान पर प्रभाव आज भी बरकरार है। सवाल यही है कि पुर्तगाल की नई पीढ़ी और रोनाल्डो का अनुभव आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में किस तरह साथ दिखाई देगा। फुटबॉल के मैदान से एक बड़ी खबर और। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत का सामना 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से हुआ। ब्राजील ने मुकाबला 4-0 से अपने नाम किया। स्कोर भले ही भारत के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन भारतीय टीम ने कई मौकों पर अच्छी रक्षात्मक क्षमता दिखाई और ब्राजील जैसे विश्व स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलने का महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया। भारतीय कोच खालिद जमील के लिए ये मुकाबला टीम की कमियों को पहचानने और भविष्य की तैयारियों को मजबूत करने का अवसर भी था। अब रुक करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। अगली खेल खबर जुड़ी है बैडमिंटन से। बैडमिंटन की दुनिया में भी बदलाव का दौर चल रहा है। भारतीय बैडमिंटन को पुरुष सिंगल्स में लगातार

मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब केवल तकनीक ही नहीं बल्कि फिटनेस, स्पीड और लगातार लंबे टूर्नामेंट्स खेलने की क्षमता भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये समय अपनी पहचान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगला बड़ा कदम उठाने का है। सितम्बर के अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में कई बड़े आयोजन चर्चा में रहे। टेनिस में यूएस ओपन, बास्केटबॉल में महिला विश्व कप, फुटबॉल में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप, शतरंज में विश्व शतरंज ओलंपियाड, साइकिलिंग में विश्व रोड चैंपियनशिप और मोटरस्पोर्ट्स में फॉर्मूला 1 ने खेल प्रेमियों का ध्यान खींचा। इन तमाम प्रतियोगिताओं के बीच सितंबर की भारतीय खेल कहानी को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो वह होगी हिमाचल की धरती से निकली प्रतिभा, एशिया में भारत का परचम और विश्व खेल मंच पर भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ता प्रभाव। तो श्रोताओं, सितंबर की खेल डायरी में इतना ही, और अब खेल जगत के आज के इस अंक में बात होगी आने वाले महीने की उन खेल हलचलों की जिन पर रहेगी हर खेल प्रेमी की नजर। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में क्रिकेट का रोमांच अब रात के उजाले में देखने को मिलेगा। नाहन के चौगान मैदान में 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक पहली सिरमौर क्रिकेट लीग खेली जाएगी। T10 प्रारूप में होने वाली इस प्रतियोगिता में 10 फ्रेंचाइजी खिताब के लिए भिड़ेंगी। 4 दिनों तक चौगान मैदान में चौके छक्कों की बरसात होगी और अंतिम दिन यानी 11 अक्टूबर को चैंपियन का फैसला होगा। हिमाचल के स्थानीय क्रिकेटरों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मंच है। हिमाचल की पहाड़ियां केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी देश भर में पहचान बना रही हैं। शिमला में 23 से 25 अक्टूबर तक 13वीं MTB शिमला का आयोजन होगा। माउंटेन बाइकिंग के खिलाड़ी कठिन पहाड़ी रास्तों, ढलानों और मोड़ों के बीच अपनी गति और संतुलन की परीक्षा देते हैं। शिमला की पहाड़ी पगडंडियां इस प्रतियोगिता को रोमांच से भर देती हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को करियर और खेल के रूप में अपनाने का शानदार उदाहरण है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अब बारी है छोटे फॉर्मेट के बड़े रोमांच की। भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने हैं 5 मैचों की T20 श्रृंखला में। आज से ये मैच शुरू होने जा रहे हैं जिसमें भारतीय टीम में युवा जोश और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अच्छा मेल दिखेगा। खास निगाहें रहेंगी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे आक्रामक बल्लेबाजों पर, जबकि गेंदबाजी में पंजाब के अर्शदीप सिंह से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। क्या टीम इंडिया T20 श्रृंखला अपने नाम कर पाएगी? जी हाँ, इसका जवाब मिलेगा मैदान पर। श्रोताओं, क्रिकेट का रोमांच केवल अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों तक सीमित नहीं, देश की प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का नया सत्र भी 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की टीमें भी अलाइट स्तर पर अपनी चुनौती पेश करेंगी। रणजी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट की वह नर्सरी है जहां से वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सितारे निकलते रहे हैं, इसीलिए अक्टूबर से शुरू होने वाली इस घरेलू क्रिकेट पर भी क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी। अगर बात करें हॉकी की, तो पंजाब की धरती एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के सितारों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में हीरो मैन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का आयोजन होने जा रहा है। जालंधर का ऐतिहासिक सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम लीग चरण के मुकाबलों का केंद्र होगा। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एशिया की शीर्ष टीमें यहां आमने सामने होंगी। इसके बाद मुकाबला होगा मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहां 4 नवंबर को सेमीफाइनल और 5 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। पंजाब और हॉकी का रिश्ता बेहद पुराना है और गौरवशाली भी। देश के अनेक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सितारे देने वाले पंजाब में इस तरह की प्रतियोगिता होना युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का बड़ा अवसर है। अब देखना होगा कि एशिया की कौन सी टीम मोहाली में चैंपियन बनकर उभरती है। अब बात उन बेटियों की जो आने वाले समय में भारतीय हॉकी का चेहरा बन सकती हैं। 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंडर 17 नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट आयोजित होगा। कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर के मंच पर खेलने का अनुभव इन खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं मैदानों से निकलने वाली प्रतिभाएं आने वाले वर्षों में भारतीय महिला हॉकी टीम की ताकत बन सकती हैं। श्रोताओं, अब हॉकी के मैदान से

जुड़ी अगली खबर पर आते हैं। हॉकी के मैदान में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अक्टूबर माह में। झांसी में 10 अक्टूबर से 16वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू होगी। देश के विभिन्न हिस्सों से आई टीमें खिताब के लिए जोर लगाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रतियोगिताएं भारतीय हॉकी के लिए नई प्रतिभाओं की तलाश का महत्वपूर्ण माध्यम है। पंजाब जैसे हॉकी प्रेमी राज्य की नजरें भी इस प्रतियोगिता में उभरते खिलाड़ियों पर रहेंगी। क्रिकेट और हॉकी के साथ साथ भारतीय एथलेटिक्स पर भी अक्टूबर की खास नजर रहेगी। नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर तक 65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी। दौड़ कूद और थ्रो की विभिन्न स्पर्धाओं में देश के शीर्ष एथलीट अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। एथलेटिक्स वह खेल है जहां खिलाड़ी की गति, शक्ति और तकनीक तीनों की परीक्षा होती है। ऐसे आयोजनों से भारतीय खेलों को नए सितारे मिलते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल जगत में अब चलते नजर डालते हैं एक खास खबर पर। अक्टूबर के अंतिम दिनों में दुनिया की युवा खेल प्रतिभाओं का एक बड़ा मंच सजने जा रहा है। 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सेनेगल के डकार में यंग ओलंपिक गेम्स आयोजित होंगे। दुनिया भर के युवा खिलाड़ी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के लिए ये प्रतियोगिता आने वाले समय के खेल सितारों की पहचान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस महीने किसी ने दौड़ते हुए इतिहास रचा, किसी ने रिंग में मुक्का जमाया, किसी ने तीर से निशाना साधा, तो किसी ने मैदान पर तिरंगे की शान बढ़ाई। मंडी के सावन बरबाल से लेकर चंबा की सीमा कुमारी तक हिमाचल की मिट्टी ने एक बार फिर साबित किया कि पहाड़ों में सिर्फ ऊंचाइयां ही नहीं होती, ऊंचे सपने भी होते हैं। और भारत के लिए एशियाई खेलों की 85 पदकों की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीत केवल पदक में नहीं होती, जीत होती है उस मेहनत में जो पदक तक पहुंचाती है। खेल हमें सिखाता है, गिरो तो उठो, हारो तो सीखो, और जीत मिले तो अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। इसी जज्बे, इसी जुनून और इसी खेल भावना के साथ हम फिर लौटेंगे खेलों की दुनिया की नई खबरों और नई कहानियों के साथ। तब तक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहिए, खेलों से जुड़े रहिए, और याद रखिए, मैदान बदलते हैं, मुकाबले बदलते हैं, रिकॉर्ड बदलते हैं, लेकिन जीतने का जज्बा कभी नहीं बदलता।

0: ये था आज का खेल जगत कार्यक्रम। कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: जोश, जुनून और जीत की उड़ान, हर खेल की खबर, हर खिलाड़ी की पहचान, ये है खेल जगत।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
6: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
6: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
6: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। सुबह के 11:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
0: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
0: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
1: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
0: जी।
1: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
0: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
0: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
1: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
0: जी।
1: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
0: पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं, आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
0: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
1: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है, और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओ, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
0: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
1: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
0: जी।
1: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
0: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
1: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
0: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
1: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
0: क्या हुआ था अजीत जी?
1: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
0: जी।
1: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
0: जी, क्या छपा था?
1: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
0: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
1: जी, श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
0: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
1: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए
1: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
0: जी
1: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
0: वो कौन सी अजीत जी?
1: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
0: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
0: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
1: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
0: जी,
1: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
0: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए और हमारा सवाल है,
0: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
1: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है।
0: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
1: जी,
0: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
5: क्यों, क्या आज खाने

0: लिए मछलियाँ नहीं मिली?
1: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
0: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
1: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
0: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
1: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
0: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
3: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
0: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
3: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
0: क्या कहा?
3: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
0: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
3: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
1: नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
3: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
3: अपने मित्र को देखो।
0: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के

0: बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
2: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
3: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
4: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
5: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
6: जो आज्ञा आचार्य।
5: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।

0: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
1: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
2: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
1: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
3: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
4: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
0: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
2: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
4: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
5: श्वेत केतु,
6: अष्टावक्र,
5: मुझे प्रतिशोध

0: सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
1: हाँ,
0: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
1: कब चलना है?
0: बस अभी तुरंत।
2: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
3: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
0: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
4: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
5: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
6: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
0: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
5: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
0: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
2: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
5: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और ये भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
0: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
5: अत्यंत सुंदर।
4: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
5: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
0: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
2: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
0: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
4: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
5: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
0: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।

0: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
0: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।
2: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में दीवाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। समीर के बोल थे, संगीत नदीम श्रवण का था। लीजिए सुनिए रंग फिल्म का ये गीत। इस फिल्म के लिए संगीत दिया नदीम श्रवण ने। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, अब आपके रेडियो सेट पर है जुर्म फिल्म का गीत। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में जुर्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सैनिक भाइयों, लीजिए सुनिए राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर परिंदा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और सुरेश वाडकर की।

सैनिक भाइयों पर इंदा फिल्म के संगीत के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सखी सहेलियां सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

0: सखी सहेलियों नमस्कार। आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो से आपकी रेडियो सखी ज्योति कार्यक्रम सुनो सखी में आप सभी प्यारी सखियों का तहे दिल से स्वागत करती है। आज का कार्यक्रम सजीव फोन इन है। हफ्ते का ये दिन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम होता है सखियों। जी हाँ, मंगलवार की ये खूबसूरत दोपहर जिसमें बस वही बातें होंगी जो आपके और हमारे दिल के करीब होंगी और सुनवाएंगे आपको आपकी फरमाइश का गीत। गीत सुनने के लिए आपको मिलाना है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का ये नंबर 01892224391। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं 01892224391। आज जिन फिल्मों में से गीत आप सुन पाएंगी अब उनके नाम आपको बताते हैं। बॉर्डर, हम है राही प्यार के, हम दिल दे चुके सनम, मिस्टर इंडिया, डॉन, आखिर क्यों, हिंदी मीडियम, एयरलिफ्ट। जी हाँ, ये हैं आज की हमारी चुनिंदा फिल्में। और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला साथियों के लिए है और वही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। जी हाँ सखियो, जल्दी से मिलाइए आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का नंबर और शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है कार्यक्रम की पहली कॉलर।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी, मैं साक्षी बोल रही हूँ नूरपुर से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम सुनो सखी में।
1: आप कैसे हो मैम जी, ठीक हो?
0: जी बहुत बढ़िया हैं। आप जब श्रोताओं से हमारी बात होती है तो अच्छा लगता है और भी हम बढ़िया हो जाते हैं।
1: हाँ जी, मैंने सोचा मैं फोन पहले मैंने अपना नंबर लगाना है।
0: जी आपकी ये कोशिश होती है और कामयाब आप इसमें रहती हैं, है ना?
1: हाँ जी
0: जी। तो बताइए आज कौन सी?
1: आज रीना मैम क्यों नहीं आए?
0: जी आज वह नहीं आए हैं, आप अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाएं।
1: अच्छा, कौन कौन सी फिल्म? मैंने जल्दी जल्दी से कॉल लगा दिया पहले।
0: जी आप कॉल लगाने में व्यस्त रही। बॉर्डर, हम है राही प्यार के, हम दिल दे चुके सनम, मिस्टर इंडिया, डॉन, आखिर क्यों, हिंदी मीडियम और एयरलिफ्ट।
1: आखिर क्यों?
0: जी कौन सा गीत इस फिल्म का सुनेंगे?
1: आखिर क्यों का कोई भी,
0: कोई सा भी।
1: अच्छा सब सुना दीजिए जो मेरे को भी अच्छा लगे ना। मैं कम इसलिए मैं देखती हूँ ना मैम जी, पर एक बहाना होता है, आपसे बात हो जाती है, मेरे का यही बहाना है।
0: जी ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।
1: धन्यवाद मैम जी, आपने फोन उठाया।
0: जी शुक्रिया आपका।

0: 01892224391 ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोस का नंबर, और देखते हैं कौन सी सखी हमसे जुड़ी है। हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: हाँ जी
0: स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम सुनो सखी में।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी दर्शना जी बात कर रही हैं।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी कैसी हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे?
0: जी मैं बोल रही हूँ ज्योति।
1: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
0: जी
1: आपने पहले ही पहचान लिया, मैंने तो बोला भी नहीं अपना नाम।
0: जी बिल्कुल, आप नियमित श्रोता हैं और अपनी श्रोताओं की आवाज़ हम पहचानते हैं।
1: हाँ ठीक है मैडम जी, और सुनाइए।
0: जी ठीक हैं, आप बताएं क्या कुछ कर रही हैं?

0: जी आपकी आवाज कट रही है
1: कट रही है।
0: जी।
1: आप ठीक है? हाँ
0: हाँ जी, अब ठीक है, बताइए
1: जी, चलिए।
0: जी। अपनी फरमाइश पहुंचा दें पहले और फिर बातचीत करते हैं आपसे। जी दर्शना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है
1: अच्छा, क्यों नहीं आ रही?
0: जी। फरमाइश
1: आप ठीक है?
0: जी, फरमाइश बता दीजिए पहले
1: फिल्म का नाम बता दो, कौन कौन सी फिल्म है आज?
0: जी। फिल्में आज हमारे पास हैं, बॉर्डर, हम है राही प्यार के, हम दिल दे चुके सनम, मिस्टर इंडिया, डॉन, हिंदी मीडियम, एयरलिफ्ट।
1: अच्छा, किसी भी फिल्म का सुना दो मुझे,
0: जी आप पसंद कीजिए और गीत हम आपको सुनवाएंगे।
1: जो पहले बोली थी वो कौन फिल्म थी? बॉर्डर
0: बॉर्डर, बॉर्डर फिल्म।
1: का सुना दो। हाँ
0: ठीक है दर्शना जी, आपकी
1: जी,
0: फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं बॉर्डर फिल्म से ये खूबसूरत गीत। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।
1: हाँ, थैंक यू मैडम जी।

जी कार्यक्रम है सुनो सखी, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। अपनी नई श्रोता सखियों को हम बता दें कि आज का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश है। हमसे जुड़ने के लिए आपको मिलाना है 01892224391 ये नंबर।

0: जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो सखी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
0: हेलो।
4: हेलो
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: जी नमस्ते जी।
0: जी कौन बात कर रही हैं और कहां से?
4: जी मैं काजल बात कर रही हूं जलेरा से।
0: जी काजल जी, जलेरा कहां पर है ये?
4: ये चिंतपूर्णी के पास है।
0: अच्छा जी, तो किस तरह का मौसम रहता है वहां?
4: बस हवाएं चलती रहती है ठंडी ठंडी।
0: अच्छा जी,
4: हाँ जी,
0: तो बहुत सुहावना मौसम रहता है ना?
4: हाँ जी बिल्कुल।
0: और काजल जी क्या कुछ करती हैं?
4: जी हाउस वाइफ हूँ।
0: हाउस वाइफ हैं, तो किस तरह रहती है दिनचर्या?
4: बस अभी दोपहर का खाना बनाकर हटी थी तो फिर मैंने सोचा कॉल कर लूँ, पहले तो लगी नहीं रही थी।
0: जी
4: फिर हम... बहुत दिनों बाद लगी है आज।
0: जी जी, आप बहुत देर से जो है वो कॉल मिला रहे थे।
4: हाँ जी
0: जी, और आप इसमें कामयाब हो चुके हैं।
4: हाँ जी
0: जी, बताइए कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
4: कौन कौन सी फिल्में आज?
0: जी फिल्में अब जो हमारे पास हैं उनके नाम हैं हम है राही प्यार के, हम दिल दे चुके सनम, मिस्टर इंडिया, डॉन, हिंदी मीडियम और एयरलिफ्ट।
4: एयरलिफ्ट का सुना दीजिए, सोच ना सकेगा ना।
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है ये।
4: हाँ जी
0: जी, ठीक है काजल जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया
4: जी, धन्यवाद।

0: जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते जी, अपना नाम एक बार फिर से हमें बता दें।
1: मैं ज्योति बोल रही हूँ, जम्मू से मैडम जी।
0: अच्छा जी, ज्योति जी की बात ज्योति से हो रही है।
1: हमारा दोस्त नाम एक ही है दीदी जी।
0: जी, और जम्मू से आप बात कर रही हैं?
1: हाँ मैडम जी, जम्मू से बोल रहे हैं
0: जी। और हमारे जो कार्यक्रम हैं वह आप नियमित सुनते हैं?
1: हाँ मैडम जी, बहुत अच्छे लगते हैं आपके प्रोग्राम, सभी अच्छे लगते हैं
0: जी। शुक्रिया आपका इसके लिए। और क्या करती हैं ज्योति जी?
1: बस मैडम जी घर का ही काम करते हैं
0: जी, घर का काम करते हैं, तो कैसे लगते हैं ये काम, कभी बोर तो नहीं होती?
1: नहीं, मैडम जी घर का काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी, मतलब अच्छा लगता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो कई बार होता है ना कि हम उदास हो जाते हैं कि रोज एक ही काम करना है।
1: ना, सभी काम करना पड़ता है घर का मैडम जी।
0: जी, अच्छा लगा जानकर कि जो भी काम आप कर रही हैं उससे आपको प्रेम है।
1: हाँ मैडम जी,
0: जी, और आज की फरमाइश क्या है आपकी?
1: हम हाँ, राही प्यार के ये वाला गाना सुना दो।
0: जी बिल्कुल, हम राही प्यार के ही हैं जी।
1: हाँ
0: इसका टाइटल सॉन्ग सुनेंगी आप?
1: हाँ मैडम जी, ये वाला सुना दो।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
1: ओके मैडम जी।

जी 0118922243 ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का फोन नंबर। फोन मिलाइए और सुनिए अपनी फरमाइश का गीत।

0: कार्यक्रम है सुनो सखी। हेलो।
1: हेलो
0: जी, ये कार्यक्रम सिर्फ हमारी महिला साथियों के लिए है।
1: मैम एक गाना सुना दो।
0: जी, श्रोताओं से हमारा अनुरोध रहेगा कि इस कार्यक्रम में वे कॉल नहीं कर सकते हैं, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला साथियों के लिए है।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: हेलो।
4: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रही हैं?
4: मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ।
0: अरे वाह जी, मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: जी मैम।
0: और कैसी हैं मीनाक्षी?
4: बस बढ़िया मैम।
0: क्या कुछ कर रही हैं आजकल?
4: अभी तो मैम सूट स्टिचिंग का काम चला हुआ, अभी 4-5 दिन लगेंगे खेती पकने में, उसके बाद फिर देखते हैं आगे।
0: जी, धान के काम भी जो हैं वो अब आ गए हैं ना।
4: हाँ जी मैम।
0: जी, और साथ में आप सिलाई का काम भी करती हैं?
4: हाँ जी, मैं सुन रही थी, मैंने सोचा मैं सभी के सबसे लास्ट में करती हूँ कॉल।
0: अरे ऐसा क्यों, अगर रेल का डिब्बा छूट जाता फिर?
4: नहीं नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मिल जाएगा।
0: जी मिल जाएगा, और वहाँ के आत्मविश्वास है आपका और फोन लग गया आपका, है ना?
4: जी
0: जी। मीनाक्षी बताएं फिर आज की पसंद आपकी।
4: मैम कौन कौन सी बची हैं फिल्में?
0: जी अब जो फिल्में हमारे पास शेष हैं उनके नाम हैं हम दिल दे चुके सनम, मिस्टर इंडिया, डॉन और हिंदी मीडियम।
4: मैम हम दिल दे चुके सनम का सुनवा देना, कोई सभी। मैम
0: जी कोई सभी गीत आपको सुनवा दें।
4: हाँ जी मैम।
0: ठीक है, सुनते हैं इसका टाइटल सॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, आप हमारे साथ जुड़े।
4: ओके।

0: जी, कार्यक्रम की ये थी अंतिम फरमाइश। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। लेते हैं सखियों आपसे अनुमति, नमस्कार।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर का 1 बजने को है और ये समय है आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचारों का, और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाद क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defense capabilities. The Defense Minister today launched Fleet Support Trip 1, laid the keel for Fleet Support Trip 5, and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said Fleet Support Trip 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new Slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects. The Defence Minister said the Indian Navy has repeatedly demonstrated its capabilities in the Indian Ocean region as a first responder and preferred security partner. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rejinagar and Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Vice President C.V. Radhakrishnan has said Sanskrit is the golden string which connects all Indian languages. Addressing the second convocation of Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan said every Indian language is great and they have contributed towards the culture of the nation. He said Prime Minister Narendra Modi has taken several

0: Create an atmosphere of anarchy in the country. Talking to media in New Delhi, BJP national spokesperson Samit Patra said the opposition parties are making derogatory remarks against the country's constitutional bodies in a sponsored manner.
1: For several weeks now, Election Commission has been attacked. From time to time, attacks were made on Indian Army, India's Supreme Court, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, Indian Hindus and EVMs. We believe that the Congress Party is still trying to create anarchy and an atmosphere of disorder in the country by using the Election Commission. Before the so-called rally and march take place, it is our responsibility as a political party to accurately place the issue before the people of the country and explain what is happening in the Election Commission and what is happening in the matter before the Supreme Court.
0: Opposition parties held a protest march today from Parliament House to the Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India, over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR process and the demand to sack Chief Election Commissioner CEC Gyanesh Kumar. However, while heading towards the Election Commission, security personnel stopped them inside Akashwani Bhavan. Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, and opposition MPs from other parties staged a sit-in on Parliament Street. India's women's cricket captain, Harmanpreet Kaur, has stepped down as captain across all three formats. The 37-year-old announced her decision after a BCCI review meeting in Guwahati. Harmanpreet led India to its maiden ODI World Cup title last year and also guided the team to gold at the Asian Games. She captained India in 5 tests, 51 ODIs and 155 T20 internationals, having led the T20 side since 2016 and taken charge of the ODI team in 2022. And with that, we end this news bulletin.
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
5: आज की मुलाकात बस इतनी, वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है और आगे आपने कल के कार्यक्रमों का जिक्र भी किया है। आप एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस, ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे सादे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को।

अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नज़ारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है, ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए, या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहाँ, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ, तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती हैं, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहाँ मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे की मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहाँ से आवाज़ आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहाँ बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। चलिए आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो यह अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज़्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त परिवार रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारे श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है।

है और हम सफर भी बन जाती है आज उनसे पहली मुलाकात। ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी न कोई उम्मीद, न ये आभास कि सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता है आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज़ आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज़ सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्मपत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नज़रें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली। कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान भरी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ, क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, बस मजा आ जाता है, बस आपका ही सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिससे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज़ होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और ज़िंदगी के लंबे सफ़र को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहब्बत ज़िंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थी ये भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला, पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूँ। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इला अरुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इला अरुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे जो अब भी हैं। चमड़े से बनी सफ़ेद चप्पल पहने, सफ़ेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफ़ेद बाल, सफ़ेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात, नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने

के पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफेद कुर्ता पाजामा पहने शख्स थे गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए आपने अपने दिल को खंगाला ना, गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे, इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे गीत हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूँ मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुँचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है, विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैयालाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूँ, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुँचा भी देंगे उन तक। वही एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कन्फ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक

काकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है, क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे, क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं, अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे, जैसे मुझे बरसों से जानते हो, ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फ़ोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों बरसों से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगे पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए, नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती हैं कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो है, वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज़्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, ज़िंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत ज़िंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज़ टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद हैं, कौन कौन से गीत हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्री कृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है। कभी वो रास्ते का हिस्सा बनता है और कभी किसी इमारत की नींव, तो कभी किसी कलाकार की कल्पना का एक सुंदर रूप।

हाथ से। एक पत्थर का महत्व उसकी मजबूती में छिपा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिप वे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के

0: हस्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु पेड़ पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है। हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुँच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
7: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
7: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की।

0: प्रबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल फिल्म का

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नोमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

0: जवान जोश पर आई हुई। वही वही वही वही वही वही सुभान अल्लाह।
1: ओ तेरा जवाब नहीं।

0: तरफ है तिरछी नजर और एक तरफ है पतली कमर, बाजी बराबर लगी हुई ना इधर कसर ना उधर कसर।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज बिलासपुर पहुंची। एम्स हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। बाद में राष्ट्रपति ने एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने डॉक्टरों से चिकित्सा क्षेत्र में सेवा भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़े और भावी पीढ़ी भी इसका अनुसरण करे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डॉक्टरों को ईश्वर की संज्ञा दी जाती है, ऐसे में मानवता की सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
1: इस संस्थान की पहचान और विरासत के निर्माण का शुभारंभ करने का कर्तव्य आपको निभाना है। आपका ये सदैव प्रयास होना चाहिए कि आपके आचरण और कार्य से इस संस्थान का नाम बढ़े, आप यहाँ के भावी विद्यार्थियों के लिए आदर्श बने। इस प्रोफेशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मानवता की सेवा करना। आपकी संवेदनशीलता और करुणापूर्ण व्यवहार बीमारी व्यक्ति को हिम्मत देता है, इसीलिए आप अपने प्रोफेशन में श्रेष्ठ बनने के साथ साथ संवेदनशीलता और करुणा को भी अपनाना चाहिए।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य के दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक बहुआयामी चुनौती है, लेकिन चिकित्सकों की कोशिश और मनोबल से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि इस संस्थान से प्रशिक्षित डॉक्टर बिना किसी झिझक से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देंगे।
1: एम्स बिलासपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण आपकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में बसी आबादी तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक बहुआयामी चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है आपका जो मनोबल, आपका जो कोशिश, आपका जो भावना, मुझे लगता है ये चुनौती को सामना करके उन तक सेवा पहुँचाएंगे।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना मरीजों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से आम लोगों के लिए गंभीर बीमारी का इलाज करना संभव हो पाया है। राष्ट्रपति ने प्रदेश सरकार से लोगों को इस योजना की जानकारी उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने संस्थान के मेधावी प्रशिक्षुओं को पदक व डिग्री देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि बिलासपुर के विद्यार्थियों को इस प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन का विशेष अनुभव मिला है। उन्होंने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा और ब्रांड को बनाए रखने व मानवता के लिए समर्पण भाव से

0: एक कार्य करने का आह्वान किया।
1: मैं ये चाहूंगा कि आप हाई डेडिकेशन के साथ, ईश्वर की बहुत कृपा है कि आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एजुकेशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिस इज हाउ दिस सोसाइटी इज ट्राइंग टू गिव, सो इट इज ए प्रिविलेज टू यू। और बिलासपुर वालों को तो विशेष करके बधाई देना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक वातावरण में आपको पढ़ने का मौका मिला है, इसका हमको सदुपयोग करते हुए आप जहां भी जाएं एम्स का ब्रांड नेम जरूर बना करके रखें और उसको ध्यान में रखें। यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हाई क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, मानवता के लिए काम करेंगे।
0: दृष्टिबाधित संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज राज्य सचिवालय शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दृष्टिबाधित संगठन पिछले लगभग अढ़ाई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर शिमला में आंदोलनरत है। संगठन के सदस्य राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और आज दिव्यांगजन दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ व्यवहार कर रही है और उनके संविधानों का लगातार हनन हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और बीपीएल में दिव्यांगजनों को बिना शर्त शामिल करना दिव्यांगजनों की मुख्य मांगे हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में ये अनुमान 6.6% का था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: ये थे प्रादेशिक समाचार। अब प्रस्तुत है हमीरपुर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं हरीश नंदा और वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
0: जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा ब्यास नदी पर 31 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 250 मीटर लंबे डबल लेन मोटर योग्य व फुटपाथ सधीड़ा पतन पुल का शिलान्यास किया गया। पुल बनने से नादौन और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्रों की 15 ग्राम पंचायतों के 30,000 से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये पुल नादौन की चमराल पंचायत के दरियाल गांव को ज्वालामुखी के सिल्ह जोड़ेगा। ज्वालामुखी पहुंचने के लिए नादौन और सुजानपुर की आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के लोगों को अभी नादौन होकर 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। पुल बनने के बाद ये दूरी घटकर करीब 15 से 17 किलोमीटर रह जाएगी। इससे सुजानपुर क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रवासियों की पुल निर्माण की मांग अब पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि परियोजना से नादौन और ज्वालामुखी क्षेत्र के लोगों को आवागमन बेहतर होने के साथ साथ यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होंगे। उन्होंने स्थानीय पंचायत में पंचायत भवन और कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। नादौन विधानसभा क्षेत्र के करंडोला में प्रदेश का पहला एलाइड हेल्थ केयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कॉलेज निर्माण के लिए करंडोला प्लासी पंचायत के करंडोला में 106 कनाल भूमि चिन्हित की गई है। ये स्थान निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैल में जन स्वास्थ्य शिविर के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ये घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि कॉलेज इसी वर्ष शुरू करने की योजना है, साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई में न्यू एज कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने रैल में 2 करोड़ रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए से बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैल के भवन और 9 करोड़ 43 लाख रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन के अतिरिक्त भवन खंड का शिलान्यास भी किया। जिला मुख्यालय में अब पेयजल की गुणवत्ता की हर पल निगरानी की जा सकेगी। जल शक्ति विभाग ने करीब 18 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक रियल टाइम मॉनिटरिंग निगरानी प्रणाली स्थापित की है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू द्वारा बस स्टैंड के पास इस प्रणाली और प्याऊ का शुभारंभ किया गया। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि जल शक्ति विभाग के मानकों के अनुसार पेयजल

0: आयोजित की गई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिले में सुनवाई के लिए आए 13,651 मामलों में से 10,000 रुपये से अधिक की राशि वसूली गई। प्री लिटिगेशन के 1,550 मामलों में से 66 का निपटारा कर 9,65,000 रुपये वसूले गए। पोस्ट लिटिगेशन के 912 मामलों में से 497 का निपटारा हुआ और 1,37,00,000 रुपये से अधिक की राशि वसूली गई। मोटर वाहन अधिनियम के 11,189 मामलों में से 10,070 का निपटारा कर 29,85,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत प्रभावी माध्यम है। इससे लोगों के समय और धन की बचत होती है, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। इसी के साथ हमीरपुर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें, अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी ज़रूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएँ मिलकर अपनी कंपनी बनाएँ और ख़ुद फैसले लें, तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी, बल्कि पूरे गाँव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
4: आरती और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं, उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, इनकी सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं, ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
3: बिल्कुल। और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है, और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है, उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं से हुई थी,
4: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया, और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज़ के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे, ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गाँव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं, बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
3: बिल्कुल। क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये सब नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है, और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सकें। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
4: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज़ नहीं की जा रही है, और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था, बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है, उसको बढ़ाना था।
3: बिल्कुल। और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गाँव में होता है, सभी चीज़ों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
4: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद

0: मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज़ आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी
0: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचें कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
1: अभी समय हो गया एक छोटे से
0: अंतराल का।
1: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है,
1: है
0: और
1: भी अच्छा।
0: अब बात करते हैं एक मुहावरे की, जो है ओखली में सिर देना। यानी बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आबैल मुझे मारो, और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो करूँगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं कहीं पर, आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में दी क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश हैं इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो ख़राब हो गए हैं तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो अब डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

यार हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई,
1: मिठाई आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार नहीं सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज़ नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज़, भाई नहीं रख दो काम की चीज़ है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज़ से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज़ से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहाँ से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं। और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार

0: पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं, उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं, सजावट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो। और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है? तो कई बार क्या करता है मन,
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो,
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद लें।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी, जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, इतना सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है, तो मन ही नहीं करता वहां से हटें। अच्छा ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में, लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें। इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का साथ ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना?
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है।

0: करना इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
1: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्यौहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्यौहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएँ, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मज़ा होता है इन चीज़ों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ़ सफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफ़ी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार

0: आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्यौहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मज़ा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहाँ एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्यौहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्यौहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियाँ देती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीज़ें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो, ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है, वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
0: और
1: है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्यौहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीज़ें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मज़ा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयाँ पहुँचाते हैं उनसे, ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ये खुशियाँ बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्यौहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है। मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीज़ों में मेरी जो चीज़ें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है। मतलब त्यौहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना, कि जब त्यौहार में सफाई होती ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें, ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीज़ों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं, और घर को साफ़ करने के लिए भी नई चीज़ें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए, और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुला कर त्यौहारों में उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और ख़रीदारी त्यौहारों की केवल बाहरी तैयारियाँ हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियाँ, जो खुशियाँ हैं उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल, घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्यौहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है। जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक ख़ास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज़ होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको ख़ास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल, और वैसे भी सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज़ हैं उनके लिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, किसी को थोड़ी कम होती हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देख कर हम उसके लिए अपनी सीमाएँ तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की ज़रूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें, और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल, और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाज़ों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सब सजावट करते हैं,
1: देखिए ना संदेश आना बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्यौहार को सच में त्यौहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया। तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि सायोनारा कहने का
1: हम भी सायोनारा कहते हैं,
0: कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को है और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूँ, कैसे बात करूँ।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए हैं ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ, तो विविध भारती किस तरह से आपकी ज़िंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें ज़रूर बताएं, वहाँ से शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, बच्चे ही थे और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
1: अच्छा।
2: हाँ जी,
1: क्या बात है।
2: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसे की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे
1: जी जी,
2: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से विविध भारती मेरे ज़िंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए, है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना चाहता हूँ।
1: ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज़्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगियों पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
2: शुक्रिया।
1: बचपन की जैसे बात की आप,

0: तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए,
1: हाँ जी
0: क्या
1: हाँ
0: वो इस
1: जी
0: चीज़ से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज़, बचपन को जिया है शायद आपने, जिसे सही मानों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में?
1: बिल्कुल। अरे वाह, एक तो जहाँ पे मतलब क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहाँ मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहाँ अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
0: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
1: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
0: अच्छा।
1: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊँ मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विद्यार्थी ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
0: और
1: कोई
0: सपनों की
1: और
0: नगरी में आना ही है।
1: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
0: जी,
1: तुम्हारा है तुम लड़ो।
0: बचपन में कैसे थे, नटखट थे,
1: अरे बहुत
0: किस तरह
1: ज्यादा।
0: के, आपने बचपन को जिया है जैसे,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: किस
1: जी
0: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे, भाई बहनों के बीच
1: बिल्कुल
0: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
1: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह है कि जहाँ मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
0: अच्छा।
1: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहाँ पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहाँ पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
0: अच्छा।
1: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार
0: कहीं ना
1: मुझे
0: कहीं
1: लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
0: जी,
1: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में हैं, कोई BSF में हैं। वहाँ एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे

0: लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: एक बहुत प्यारा गीत है। गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
0: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: अच्छा
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीज़ें, जैसे तारे ज़मीं पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूँ, कभी दीर्घी लिख दूँ किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीज़ें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस लिवाओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल हैं एम है, उससे हट के बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: ओके
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी।
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूँगा और थोड़ा जागरूक भी रहूँगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये
0: बिल्कुल
1: सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा हो उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी
0: था,
1: हाँ जी हाँ
0: इसीलिए
1: जी हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं सुनने
1: देखो,
0: वाले।
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूँगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूँगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का, अंदाज का

0: हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी,
0: है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहाँ से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया, और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं
0: बिल्कुल
1: भूल ना जाऊँ। मेरे यहाँ ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल.
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था, और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ
0: जी
1: रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चूंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
0: अच्छा
1: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं, और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई, और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे, जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए, और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया, हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
0: जी
1: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
0: रच बस गया था सिनेमा.
1: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियाँ आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
0: जी
1: आज,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का.
1: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था, तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था। यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे, और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
0: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं.
1: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है, मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूँ मैं, ये बहुत मुश्किल है। जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
0: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे.
1: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
0: ये
1: चादर।
0: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
1: बिल्कुल,
0: नहीं सपने देखने से,
1: हाँ
0: और जो चाहेंगे वो होगा,
1: हो जाएगा,
0: बस वो मेहनत की ज़रूरत है
1: एक ही
0: और
1: जिंदगी मिली है
0: शिद्दत.
1: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
0: जी,
1: है ना,
0: मन की
1: और
0: खुशी.
1: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
0: जी
1: नहीं, वहाँ भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहाँ,
0: बिल्कुल.
1: लोगों को लगता है अरे ये सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूँ माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूँ, ना कि मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूँ, एक कमाल की एनर्जी में होता हूँ, ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
0: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा है,
1: ओहो,
0: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट के बीच का
1: लम्हा, वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
0: मेडिटेशन,
1: बिल्कुल
0: ध्यान,
1: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूँ, उस पल को जी लूँ। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है, उसके आसपास भी चला जाऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
0: यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
1: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुँचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुँचे थे। तो वहाँ थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लगता था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें,
0: जी
1: है ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहाँ पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूँकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊँगा। और
0: अच्छा
1: मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और
1: हाँ
0: उसके
1: जी,
0: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
1: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
0: बिल्कुल
1: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगूं। तो मैंने किया

0: जॉब, दैनिक जागरण में, IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मैं पूरे पैसे नहीं आते थे,
1: अच्छा
0: है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में,
0: हाँ
1: उसकी याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूँ, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते हैं आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना,
1: जी
0: 50 चीज़ें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन, वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया
1: अच्छा
0: ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा।
1: अच्छा
0: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो 1-2 दिन 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मज़ेदार था आपके लिए,
0: मज़ेदार तो
1: क्रिएटिव
0: बिल्कुल
1: है,
0: था, बिल्कुल था,
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते
0: भी
1: हैं।
0: नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी ज़िंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत ज़रूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत ज़रूरी था, तभी तो आज जब चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी जी
0: है ना। और जाता क्या था, 1-2 दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूँ ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊँ तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहाँ से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहाँ से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था, और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
1: बिल्कुल
0: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, चूंकि
1: जी
0: ये चीजें मैंने देखा है, भोगा
1: जी
0: है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं,
1: जी
0: इसलिए ये सब चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे,
1: अच्छा
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें,
1: अच्छा
0: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है, मैं रोज 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें
1: अच्छा
0: सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं,
1: अच्छा
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है, रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया, फिर 1-1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है, अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके,
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज़्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो है मोहरा फिल्म का, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं
1: सही
0: सारे बचपन के सारे गाने लेकर
1: बिल्कुल
0: के
1: बिल्कुल
0: ही,
1: सुनवाते हैं
0: हाँ जी,
1: गीत।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती।

0: भी राष्ट्रीय सेवा।
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ के सहयोग से चलेगा।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में इलाज किया जा रहा है। भारत ने क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले तुरंत रोकने की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

0: कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में।
1: कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष इस देश में शासन करने का मौका मिला है और उसमें से 2 साल इमरजेंसी लगा के शासन किया और उस इमरजेंसी के समय में संविधान का प्रीएम्बल को बदल दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आज ये लोकतंत्र की बात करता है।
0: पार्टी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
3: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8% के बीच में,
4: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद न्यू रेलवे लाइन्स, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड, एन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी एंड प्लान ऑल दीज एस्पेक्ट्स।
3: एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
2: The cabinet has also given a nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of government. Mr. Modi became the Chief Minister of Gujarat on 7th October 2001 and then became Prime Minister in 2014, and tomorrow he will complete 25 years as the head of government. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said Prime Minister Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract, under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category, was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. Defence Minister Rajnath Singh launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam today. Addressing the gathering, Mr. Singh said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. On its successful flight trial, Defence Minister Rajnath Singh congratulated the team, saying it is an important milestone in India's Atmanirbhar Bharat journey towards realising a long-endurance stratospheric airship. Opposition parties today held a protest march from Parliament House to the Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India in the National Capital, over alleged irregularities in the Special Intensive Revision, SIR process,

कार्यक्रम की अगली भक्ति में प्रस्तुति ये शिव भजन, जिसे हमने लिया है फिल्म बैराग से। इस भजन को गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
6: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
7: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
8: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
7: जी डॉक्टर साहब,
8: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
9: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर के गाए इसी भजन के साथ अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवा मंच।

आशिकी फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सांझ अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

कार्यक्रम मौजां ग्राईंदियां सुनने वाले सारे श्रोतियां जो असंदे किसान कने बागवान भाई भैणा जो साड़ी नमस्ते कने राम राम। हाँ जी, तो क्या करा दे इस टाइम में यहाँ दे किसान भाई बहन। भाई दिखा कार्यक्रम में मौजां ग्राई दियां कने इस टाइम में यहाँ दे सारे जड़े किसान होने से अपने पट्टियां ते जड़े इनसे करे दे बखे और दे होने है ना करे बखे क्योंकि संझ लगी पई होना कने इस टाइम में संझा दा भी करना पौंदा कने अगर अहाँ माल रखिया हुआ है अहाँ गाइयां रखियां होन तां तिना दा भी थोड़ा का कू तिना दा दिखना पौंदा है ना दुध निकालना होंदा तो बड़े सारे कम होंदे संझा दे वेले कने सियाणियां दी कहावत है कि बोलदे जियां जियां संझ होंदी जांदी ना तियां तियां संझो बड़े कम जिहड़े इनसे याद आउंदे तां कम तां भई कल्लू मुकणे आहां दे कल कम जिहड़े इनसे चली रहिंदे तां दो घड़ी थोड़ी आराम करी लिया दो घड़ी बेही लिया कने रेडियो पर सुनी लिया अपना तुहां कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां। कने ग्राएं दी गल करन आहां तां ग्राएं दा तां दिखा ना कुछ माहौल ही अलग होंदा कने इक्की दुए ने मिली करी अहाँ अपने कम कार कर दे कने जे अगर सुआड़ुआ गुआड़ुआ चाहां दियां सब्जियां कुछ भी लग्या हुआ है तो इस जो बंडने दा कने खाने दा भी कुछ अपना ही मजा है कने इस टाइम में तो अहाँ दे जेड़े किसान बोली सकते अहाँ दे जेड़ियां भैन भ्रा न से अपने सुआड़ुआ कने जेड़ी पट्टियां तिना जो खाली करा दे क्यों कि अहाँ दी जेड़ी छलिए दी फसल है ना मकीय की जी फसल है सह पूरी तरह ते अहाँ ले है हूँ अजकल तो तिना जो चोड़ने कने खरोड़ने का कम लग्या कने बाकी जेड़ी अहाँ दट्टियां अहाँ तिना जो खाली करना है कजो कि गां की फसल भी अहाँ है ना बाणी है तो अजकल जो है कि कुद की फ्रांस भी निकला दे कुद की कोई अंदर अंदर लुकी के कद्दू लगी रहे हो कुद की दिखा था काकड़ियाँ का ही कोई ढेर लगी रहा है ना तो बड़ा मज़ा आता कने जालू हाँ है ना पट्टियां कम करते धुप्पा कम करते कने इं कुद की बड़ा शैल कोई आरा दिया खीरा मिली पवे काकड़ी मिली पवे तो कुछ मज़ा ही अलग हो जाता तो कुल मिलाई करी काम यही चले हो अजकल है ना पट्टियां घा जहाँ जड़ा हाँ तिशियो सुकई सुकई रखा दे कने गां सर्दियों वास्ते हाँ स्टोर करके रखा दे तिशियो कने और जो छलियाँ का जोड़ा घा है सब भी अहाँ रखना हों रुखा पर तिशियो अहाँ बनी के रखते कुछ जेडे अंदर स्टोर करके रखते यही काम कार अजकल चलिया। गल कर सुआड़ुआ की तो अहाँ दिड़िया भैन तिना साग तो मुझे लगता बाही त्या कने अजकल कई जड़े से जो जनानी बाया सभी मटर मुटर बाह दे मटर पालक कने कुसकी का साग तो लगी भी पे है ना तो यही है बस अपने जड़े लाड़ू सुआ

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
5: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
6: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
7: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
8: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: हाँ जी, तो किसान कने बागवान भाई बहना था एक बारी फिर स्वागत है बड़ा बड़ा कने आज कार्यक्रम जहाँ गल करा देने जिड़े अहाँ दे पशु तैनाती ना जो

है ना, बीमारियां हो जाती हैं। तो इस दा जड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अह इस पर गलबात करा दे। कहने दिखा ना ठीक गलांदे हैं कि भई असंत जिहड़े पशु हन से भी अह दा एक धन हन, एक अह दा एक समझ सकदे, एक अह दा मतलब संजो से कितना कुछ दिंदे। कने पशु अगर स्वस्थ होए, खरा होए, ताई दिना संजो दूध भी खरा देना, कने ताई संजो दही घी पनीर ये सारिया चीज़ा मिलनियाँ। ता जरूरी है कि हाँ जो पशु धन है से बिल्कुल स्वस्थ रहे, किसी तरह की कोई बीमारी जी ऐसे तिना ना घेरे। कने कई बार क्या होंगे कि अह दे जिहड़े पशु हन तिन्हां जो कोई बीमारी लगी जांदी तां पहले तां अह दिखी नहीं पाते कि है ना, मतलब अह पता नहीं करी पाते कि क्या बीमारी तिन्हां जो लगी है। कने जालू फिर से घा खाना बंद करींदा या फिरी जुगाल नहीं करदा, तां सानूं जो लगदा कि कुछ गड़बड़ है। तां इस वास्ते इन्हां सारियां चीज़ां जो रोकने वास्ते ये जिहड़ा कार्यक्रम ऐसा चलाया गया भारत सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य जिहड़ा है जिहड़ा अह दे पशु धन च जिहड़ियां गंभीर बीमारियां हो जांदियां तिना जो नियंत्रण करना है। कने सोगी सोगी अहां दा जिहड़ा पशु धन है तिस दी सुरक्षा करना भी है। अच्छा, ये जिहड़ा रोग है खुरपका कने मूँह पका है ना, इसका जिहड़ा ऐसे बड़े स्तर पर टीकाकरण जिहड़ा ऐसे करवाया जाता, तां तुहां भी जिहड़ा ऐसा इस दा फायदा लेना है। कने अपने जिहड़े तुहां दा पशु धन है तिस जो जरूर टीका जिहड़ा ऐसे लगवाना है। कने कई बारी क्या होंदा कि अहाँ इन्हां चीज़ों का फायदा नहीं ले पाते, कने टीकाकरण हो जाता, तो फिर इसके बाद सानू और अपने है ना अपना खर्चा करना पौंदा, अपनी दवाइयाँ लेना पौंदियाँ, बड़ी सारी चीज़ा होंदियाँ। कने जे अगर अहाँ के पशु बीमार हो जाए तो दिखा एक तो सानू परेशानी हो जाती है ना, दुध देना तिना घट करी देना। दूई गल कि भई अहाँ का जो नुकसान होंगे है ना, पैसे लगते हर जगह, तो इसका यही है कि अहाँ जलू भी कोई ऐसा सानू पता लगता है कि टीकाकरण हुआ दा या फिर है ना दवाइयाँ दिखाई जा रही सरकार की तरफ से, तो अपनी डिस्पेंसरी जी थोड़ी है ना जी तू पशु जी लेके जाते हैं तू पता करते रहना बिच बिच, कने अपने जोड़े डंगरे तिना जो टीका जरूर लगवाना। कने दिखा अहाँ तो जेडे पशु हैं सही बोली सकते कि अहाँ की जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ना, तिसदा बोली सकते कि ये आधारशिला है। क्योंकि ग्राएं च दिखा और तो चलो और काम तो अहाँ कई करते है ना, बाहर कमाना भी जाते, लेकिन अहाँ के जेडे किसान कने बागबान भाई बहन अहाँ दैणा जिन्हें गाइया रखिया, तो तिना जो एक मतलब आय का साधन है तिना का है ना, तिना गाय भी रखिया सौगी सौगी घरे का कम भी से करी लेंदियाँ, कने अपने लुआड़ू सुहाड़ू होंगे तो घा भी तू तो निकली आंदा, तो बड़ी एक अच्छी हाँ बोली सकते कि सच्ची जी अपनी जी आर्थिक स्थिति है जो मजबूत करने का एक जरिया है। अहाँ घी बनाई के बेची सकती हैं, कने गाय का जो देसी गाय का घ्यो है से तो इतना गुणकारी होंदा, मतलब बोलते ना पुराने ते पुराना घ्यो अगर मिली आए तो औरत दवाई की कोई जरूरत नहीं होंगी। कुती भी सांझो नज़ला जुकाम हो जाता, कुदकी है ना पीड़ लगी पौंदी पिट्ठी, तो बस देसी घ्यो तो अगर पुराना ले लैन तो इसकी हल्की दी मालिश तो करी लैन तो तुहांजो और दवाई की जरूरत पौंदी नहीं। अच्छा, सोगी सोगी अगर अह खाने की गल करन तां इस जो घ्यो है इस इतने गुण होंगे कि भई क्या दसीए, सोगी सोगी घरे की लस्सी हो जाती, घरे का दही हो जाता, पनीर बनी जाता, तो कुल हाँ गलाई सकते कि भई एक बहुत ही बढ़िया एक हाँ बोली सकते आय का साधन है। कने एक बहुत अच्छा हाँ व्यवसाय के तौर पर भी इसे ले सकते, अगर हम चार पांच गाइयां रखी लैन अच्छी किस्म दी तो बस अच्छा है ना, घरे का घ्यो दुध कने सोगी सोगी अह इसे बेची भी लेना, कने सोगी सोगी अपना जिहड़ा है से बोली सकते कि अपनी जिहड़ी आर्थिक स्थिति है से भी मजबूत करी लैनी। तो जरूर तो हाँ अपने पशु धन की रक्षा करनी है, तो जो सारे जिहड़े रोग अंतिना ते बचाई के रखना है, कने सोगी सोगी अपना जिहड़ा है सतीना दा ध्यान भी रखना है, कने जिहड़ी इतना दी गौशाला है से भी बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है। इस दे पर भी यहाँ गल करनी है, लेकिन पहले एक सुन लैंदे लोक झनकार।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
4: हां जी, तो लोकगीत सुन लिया कने सोगी सोगी सुने संदेश कने हुन फिर यहाँ दी गलबात जेड़ी असें शुरू होई है कने अहां गल करा दे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम दी। इसकी शुरुआत जेड़ी हुई ही सह हुई थी 2019 च। कने ये जेड़ा कार्यक्रम है ना, जेड़े अहां दे पशु उन्ती ना जो बड़ियां जेड़ियां गंभीर बीमारियां होई जांदियां या सोगी सोगी जेड़े अहां दे पशु पालक होंदे तिना जो आर्थिक नुकसान होई जांदा, कने अहां दा जेड़ा पशु दा नैतिश जो और बेहतर बनाने वास्ते ये जेड़ा कार्यक्रम है से चल लिया। अच्छा, इस कने हाँ गल कीती ही खुरपका कने मूँह पका रोग दी ना, ये तां तिना हो जांदे तां इसदा भी जेड़ा ऐसा टीकाकरण होंदा। कने एक और रोग होंदा ब्रुसलोसिस तिशियो बोलदे, कने ये जेड़ा हाँ दी गाइयां कने हाँ दी जेड़ियां मैंसियां होंदियां तिना जो जालू प्रजनन होंदा तिसते संबंधित जेड़ियां से तिना जो समस्या आउंदियां, तां ये जेड़ा है इस पर भी जेड़ा है टीकाकरण जा अहां ध्यान देना है। कने टीकाकरण जरूर करवाना है। सोगी सोगी पशुओं जो ईयर टैगिंग है ना तिना दे कन्ने च तुहां दिखिया होंदा, दिखिया होना एक क्लिप ते लगे होंदा, तां हर एक पशु जो सह जेड़ा टैग है से लगना जरूरी है। कने तिसदा सोगी सोगी पंजीकरण होना भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत होंदा। दिखा हाँ अगर गल करिए इस पशु टैग दी, तां ये इतना जरूरी है कि अगर ये टैग ना लगन तां अहाँ दे जेड़े आवारा पशु हैं तिसदी तां इतनी बढ़ोतरी हो जानी कि अहाँ कुछ गलाई नहीं सकते। क्योंकि अजकल यह है कि कोई गाय बच्छू कोई रखना नहीं चाहता, कने जे अगर रखे हुए हैं तो जल उसे दूध देना बंद करी दे तो तिसते बाद तीनों से इं आवारा छड़ी दे। तो जे अगर ये क्लिप लग गया होगा, ये जेड़ा टैग है ईयर टैग जिसे बोलते ये लग गया होगा, तो तिसदे तिस एक नंबर होंगे, तिस नंबर जो ट्रेस करके अहाँ पता करी सकते कि ये गाँ जी है या ये जेड़ा बैल है या छोटा जेड़ा बछड़ा है से कुथू ते आया है ना, कने कुसता है। तो बड़ा जरूरी है कने तो हाँ अपने जेड़े छोटे है ना बच्छू बछड़े होंगे करे गाइया आदियाँ तो तिना सारे जो जेड़ा ईयर टैग है से जरूर लगाना है। कने सोगी सोगी पशु रिकॉर्ड मतलब पशु स्वास्थ्य कार्ड से भी एक बना दस्ते से भी रखना है। कने सोगी सोगी पशु पालकों विच जेड़ी है जागरूकता फैलाना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता कि हाँ दे पशुओं जी ना जागरूक करना है कि तो हाँ अपने पशुओं का ध्यान किए रखना है ना। घराला बोली सकते गौशाला का अगर जाते हैं तिथू तो बिल्कुल तिना जो समझा बिल्कुल अच्छे तरह कुआण कूण पाई के दिनों रखना है ताकि इस दिनों ठंड ना लगे। कहीं हूँ गाँ गाँ सर्दियाँ आनी तो ठंड भी बड़ी आनी है तो अपने पशुधन का बिल्कुल ध्यान रखना है। कने ध्यान रखे तो तिना भी खूब दुध देना है, कने तो भी हर जगह दुध दही है ना पूरी भरमार होनी है। तो गल्ला और कर लेनी है पर एक सुनना है लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एम्प्टियन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयार्ड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
3: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
1: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी

220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्म वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान।

0: के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाता है।
1: तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए किसानवाणी।
0: तो जयप्रकाश जी, जैसे कि अक्टूबर का महीना चला हुआ है, तो ये समय हमारे किसान और बागवान भाई बहनों काफी व्यवस्था वाला होता है, क्योंकि इस समय धान और मक्का जैसी फसलों की कटाई और गहाई का काम इस महीने जो है पूरा कर लिया जाता है, और अक्टूबर के मध्य से अंत तक खेतों को तैयार कर गेहूं और जौ की अगेती बुआई भी शुरू हो जाती है। और बात करें बागवानी की, तो इसमें जो हमारे प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे कि किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहां पे देर से पकने वाली सेब की किस्मों की तुड़ाई, पैकिंग और मंडियों में भेजने का काम अक्टूबर के अंत तक जारी रहता है। तो जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आज इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है हमारे किसान और बागवान भाई बहन के लिए।
1: किसान भाइयों, काम की बातों के अंतर्गत आज हम करेंगे बात गन्ना की खेती किस प्रकार करनी चाहिए और साथ ही साथ मनोरंजन करेंगे पहाड़ी लोक गीत के साथ और सुनाएंगे जानकारी पूर्ण बातचीत जौ की उन्नत काश्त। तो किसान भाइयों, आइए बात कर लेते हैं काम की बातों के अंतर्गत गन्ना की खेती किस प्रकार की जाती है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण नकदी फसल के बारे में बात करेंगे जिसकी खेती किसानों को अच्छी आमदनी का अवसर देती है। आज का विषय यही है कि हिमाचल में गन्ने की खेती किस तरह करनी चाहिए। गन्ना एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और नकदी फसल है। इससे चीनी, गुड़, शक्कर और कई अन्य प्रकार के उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं। हिमाचल के कुछ मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त परिस्थितियों में गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन गन्ने की सफल खेती के लिए सबसे जरूरी बात है उचित क्षेत्र का चयन, अच्छी किस्म, स्वस्थ बीज, सही समय पर बुआई करना, संतुलित खाद, कीट रोगों का समय पर प्रबंधन करना चाहिए।
0: जी, किसान भाइयों, गन्ना जो है तृण वर्गीय ग्रामीण परिवार का बहुवर्षीय सदस्य पौधा है। बहुवर्षीय होने का अर्थ है कि जिसे एक बार लगाने के बाद दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसे ही अनेक वर्षों तक उत्पादन मिलता रहे। गन्ना पारिवारिक पौधा है। यदि हम इसकी एक आंख लगाते हैं तो उस आंख से अनेक पौधे निकल आते हैं और परिवार बनाते हैं। एक परिवार में अधिक से अधिक 108 पौधे निकल सकते हैं, लेकिन सभी पौधे गन्ने का रूप नहीं ले सकते। रासायनिक कृषि में एक आंख से 6 से 7 गन्ने के पौधे निकलते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में एक आंख से 15 से 21 तक गन्ने के पौधे हमें प्राप्त होते हैं।
1: जी
0: बात करें इसके बुआई के समय की, तो अगस्त से लेकर 10 नवंबर तक आप इसकी बिजाई जो है कर सकते हैं।
1: किसान भाइयों, जुताई करते समय खेत की भूमि को गन्ना उत्पादन लेने से पहले समतल कर ले। समतल करने के बाद 400 लीटर जीवामृत पानी के साथ देकर पलेवा बनाए। पलेवा बातर आते ही हल्की जुताई कर लेनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय 400 किलोग्राम घन जीवामृत भूमि में मिला दें। उसके बाद उत्तर दक्षिण दिशा में पंक्ति निकाल देनी चाहिए।
0: जी, अब बात करते हैं कि बीज के लिए गन्ने का चुनाव आपने कैसे करना है। तो बीज के लिए 8 से 9 महीने पुराने खेत का गन्ना चाहिए। इसमें 12% चीनी की मात्रा चाहिए। पौधे का रंग हरा और उसकी आंख उभरी हुई होनी चाहिए। पूरा गन्ना हरा व स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कीट उस पर नहीं लगा होना चाहिए। एक गन्ना जो है सबसे अच्छे खेत का चुने। 1 एकड़ के लिए एक ही गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हो सके तो प्राकृतिक कृषि में तैयार गन्ने का ही प्रयोग करें। इसमें 30% उत्पादन अधिक मिलेगा।
1: किसान भाइयों, गन्ने से बीज आंख इस प्रकार निकाले कि आंख के पीछे का चौड़ा भाग 2 से 3 और आंख के सामने का भाग 1/3 होना चाहिए, क्योंकि गन्ने का अंकुरण बीज के खाद्य से होता है। अंकुरण के समय पहले अंकुर पिछले हिस्से से खाद्य लेता है और उसकी समाप्ति के बाद अगले हिस्से से खाद्य लेता है। 1 एकड़ बीज के लिए 1 घंटा जमीन की आवश्यकता पड़ती है। लगभग जुताई करने से पहले फसल के अवशेष एक स्थान पर एकत्रित कर देने चाहिए। खेत को कड़ी धूप में सुखा लेना चाहिए। अंतिम जुताई से पहले 10 किलो घन जीवामृत छिड़क दे और बाद में 8 गुना 8 फुट अंतर पर लाइन निकाल ले। एक गुंठे में 4 रो आ जाएंगी। बात कर लेते हैं बीज कोष की।
0: जी, तो चुने हुए एक गन्ने से 16 स्वस्थ बीज आंख निकालें। उसके बाद जीवामृत से संस्कार कर हर चौराहे पर एक आंख लगाएं। बीच में लोबिया, मिर्च, गेंदा, प्याज, चना आदि सह फसलें आप लगा सकते हैं। बाद में पानी के साथ जीवामृत दें और आवश्यकता पड़ने पर जीवामृत का स्प्रे व कीट पर नियंत्रण का प्रबंध करें। प्रत्येक अंक से 12 से 48 गन्ने मिलेंगे। 16 अंकों से कुल 192 गन्ने जो है आपको प्राप्त होंगे।

0: इनमें से स्वस्थ 171 गन्ने की आवश्यकता होगी। बात करें बीज की मात्रा की तो 171 गन्ने या 2.5 क्विंटल बीज।
1: किसान भाइयों, गन्ने के बीज की किस्म की अगर बात करें तो उत्तर भारत में J85, CO118, CO88 मिल द्वारा अनुमोदित सभी किस्में लगाई जा सकती है। गन्ना लगाने से पहले की तैयारी के बारे में अगर बात करें तो संभव हो सके तो गन्ने की फसल लेने से पहले दलहन की फसल ले लेनी चाहिए। गन्ना लगाने की विधि की अगर बात करें तो गन्ना लगाने से पहले 2 फुट पर उत्तर दक्षिण दिशा में लाइन खुड़ निकालने हैं या ढलान के विरुद्ध दिशा में निकाली गई नाली की चौड़ाई 2 फुट होनी चाहिए। एक पैड में 4 नालियां होंगी। नाली को क्रमानुसार नाम 1, 2, 3, 4 रखना चाहिए। नाली नंबर 1 की अगर बात करें तो बाएं तरफ 1 आंख के गन्ने का बीज लगाएं। 2 गन्ने की आंखों में 2 फुट का अंतर रखें। ढलान के ऊपरी हिस्सों में दोनों तरफ प्याज लगाएं। प्याज के पत्तों का आकार पिरामिड जैसा होने से ये सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संग्रहित करता है। नाली नंबर 2 की अगर बात करें तो गन्ने की तरफ लोबिया, उड़द मूंग, मेथी, चना जैसी दलहन के बीज डाल लेने चाहिए। दाईं तरफ मिर्च और गेंदा लगाएं। दोनों के बीच 6 इंच का अंतर रखना चाहिए। नाली नंबर 3 की अगर बात करें तो दोनों तरफ सब्जी, अनाज, तिलहन लगा लें। नाली नंबर 4 की अगर बात करें तो गन्ने की तरफ दलहन लगाएं और बाईं ओर मिर्च और गेंदा लगा लें। जीवामृत अगर देखा जाए तो गन्ना लगाने के बाद 200 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ महीने में 1 या 2 बार डाल देना चाहिए।
0: जी, अब बात करते हैं जल प्रबंधन की। तो गन्ना लगाने के बाद पहले 3 महीने पर नाली में पानी देना है। 3 महीने के बाद नाली संख्या 1 का पानी बंद कर देना है। तब तक गन्ना लगभग 4 फुट का हो जाता है। अगले 3 महीने के बाद नाली संख्या 3 में पानी देना है और सभी नालियों का पानी बंद करना है, क्योंकि जब हम पानी को दूरी से देते हैं तो पौधों की जड़ें पानी की खोज में आगे बढ़ती है। लंबाई बढ़ने से पौधे की जड़ों की गोलाई बढ़ेगी। गोलाई बढ़ने से गन्ने का तना मोटा होगा। तना मोटा होने से पौधों की ऊंचाई बढ़ेगी और ऊंचाई बढ़ने से गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। इससे कम से कम प्रति एकड़ 40,000 स्वस्थ गन्नों का उत्पादन हो सकेगा।
1: जी किसान भाई, बात कर लेते हैं रटुना पेड़ी के बारे में। तो गन्ना काटने के बाद गिरे हुए पत्तों को सूखने दे। बाद में नाली संख्या 4 में नाली संख्या 2 के पत्तों को उठाकर डाल दे। इस प्रकार नाली संख्या 1 के पत्ते नाली संख्या 3 में डाल दे। आच्छादन डालते समय ध्यान रखे कि गन्ने के खूंट न दबे, इसे अंकुरण के लिए खाली छोड़ दे। नाली संख्या 2 और नाली संख्या 4 में दलहन के बीच लगा दे, इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा।
0: जी, अब बात करते हैं कीट प्रबंधन की। तो जब भी फसल पर कोई कीट व कीट के अंडे दिखाई दे तो 3 लीटर ब्रह्मास्त्र और 3 लीटर अग्नेस्त्र दोनों 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। अब बात करें बीमारी की। तो जब भी गन्ने की फसल पीली दिखाई दे या फंगस दिखाई दे तब 3 लीटर खट्टी छाछ में 150 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें।
1: खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो गन्ने की फसल में पहले 3 महीने कोई भी खरपतवार पैदा न होने दे। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे, लेकिन 3 महीने के बाद यदि खरपतवार रहता है तब उस खरपतवार को फसल से नीचे काट दे और वहीं पर आच्छादन कर दे। ऐसा करने से खरपतवार फसल की मदद करता है और गन्ने का अच्छा उत्पादन मिलता है।
0: जी, तो किसान भाई, ये तो बात हुई कि आप गन्ना की खेती जो है कैसे कर सकते हैं। इसलिए किसान भाई, अगर आप गन्ने की खेती शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, सिंचाई सुविधा और बाजार की उपलब्धता को ध्यान में अवश्य रखें। उम्मीद करते हैं कि जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो जयप्रकाश जी, अब कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को इंतजार रहता है लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं हेमचंद हरनोट और बिमला देवी की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये पहाड़ी लोक गीत। तो किसान भाइयों, आइए जानकारी पूर्ण बातचीत में हिस्सा लेते हैं। तो आइए सुनते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जो कि उन्नत कास्ट। बातचीत में भाग लेंगे खेमचंद कश्यप और उनसे बातचीत करेंगे हरिकृष्ण शर्मा।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जौ की उन्नत काश्त के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारियां लेकर के आते हैं, और आज भी हम आपको जानकारी देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खेमचंद कश्यप जी, जो एक प्रगतिशील किसान है। तो खेमचंद कश्यप जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कश्यप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जौ की उन्नत काश्त जो है हमारा किसान भाई किस तरह से करे। आप तो प्रगतिशील किसान है, आपको हर फील्ड का पता है कि निचले पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों जो है हमारा किसान भाई सितंबर और अक्टूबर के महीने में जौ की और गेहूं की काश्त करता है। तो
2: जी
1: हम आज आपसे यही जानना चाहे कि यानी कि जो जौ की बुआई है वो हमारा किसान भाई कब करे, उसका सही समय कब है।
2: शर्मा जी, बहुत अच्छा आपने पहले ही सवाल किया कि कौन सी किस्म, इसका जो सही समय है बुआई का, अगर हमने अच्छी उपज लेनी है तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है हम इसकी काश्त कर सकते हैं।
1: जी, यानी कि ये जो समय है बिल्कुल उपयुक्त चला हुआ है। लेकिन बुआई से पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज की बुआई खेतों में करते हैं तो उस खेत की पहले तैयारी की जाती है। तो खेत की तैयारी कैसे करें।
2: शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अच्छी उपज लेना चाहते हैं और हमें उसका भरपूर फायदा मिले, तो जौ की बिजाई के लिए मैं कहूंगा कि मैं सिफारिश करूंगा, मैं जो एज ए किसान के रूप में बात करूंगा,
1: जी
2: कि दो जुताई जो है जौ की काश्त के लिए बहुत ही जरूरी रहती है। आप पहली जुताई करें, दूसरी जुताई आप में जब आपने दूसरी जुताई करनी है तो आपने उसमें गोबर खाद मिलानी है।
1: जी
2: जो तीसरी जो आपने जुताई करनी है, जब आपने इसकी बुआई करनी है, तो आपने इसकी लाइन डोर के लिए तीसरी जुताई करनी है। पहली जुताई आपने करनी है इस तरह से, जो एक मिट्टी पलटने वाला हल होता है जिसमें
1: जी
2: निचली
1: जी
2: मिट्टी ऊपर आ जाए।
1: जी
2: जो दूसरी जो आपने जुताई करनी है, उसमें आपने 10 से 15 क्विंटल जो है गोबर की खाद इसमें डालनी है और इसको मिलाना है।
1: जी
2: तीसरी जो आपने जुताई करनी है, आपने जुताई क्या करनी है, फिर लाइन डोर करनी है इसकी,
1: जी
2: क्योंकि जब बाद में आपने इसमें लाइन डोर करनी है तो बहुत गहरी जुताई नहीं होती है, मीडियम सी जुताई होती है। आपके अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे पास, ऐसे है जिनसे हम लाइन दे सकते हैं,
1: जी
2: बैलों से दे सकते हैं, पर लाइन इसके लिए, जौ के लिए जो है, कतारों में बिजाई करना सबसे उचित रहता है।
1: कश्यप जी, आपने तीन जुताई की बात करी कि हमारा जो किसान है कम से कम तीन जुताई है जो जौ की बुआई के लिए करे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि हमारे किसान भाइयों के, अगर हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बहुत कम जो है वो सिंचाई होती है। तो किस तरह से, अगर जहां बारिश नहीं हो रही है या
2: जी, आजकल ऐसा उचित समय है, अगर लोगों के पास खेत खाली है तो वो आजकल जो है जुताई कर दे, पहली जुताई कर दे। और
1: जी
2: पहली जुताई में क्या होता है कि आजकल खेतों में नमी है, वो नमी दबी रहती है, ठीक है।
1: जी
2: उससे क्या होता है कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो है उसमें खरपतवार उग जाते हैं, नेचुरल उग जाते हैं।
1: जी जी
2: जब हम दूसरी जुताई करेंगे, गोबर और उसमें खाद डालेंगे, तो वो जो खरपतवार उगे होते हैं वो दूसरी जुताई में नष्ट हो जाते हैं। और जो आजकल की जो नमी जो दबी है ना, वो आगे जब हम इसको जौ की बिजाई करेंगे तो इसका अंकुरण जो है आसानी से हो जाता है। यदि किसी के पास सिंचाई की सुविधा है, पानी की सुविधा है,
1: जी
2: तो वो हल्की सिंचाई करके उसमें बिजाई से पहले सिंचाई करे और फिर बुआई। अगर सिंचाई नहीं है तो आजकल किसान भाई जो खेत की जुताई करे और नमी पर्याप्त मात्रा में है और उसको नमी सुरक्षित रखे, और 10 से 15 दिन, 1 महीने के बीच में आप उसकी बिजाई कर दे।
1: यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आजकल जो है नमी बरकरार रहती है,
2: जी
1: क्योंकि जैसे बरसात जाती है तो बरसात के बाद खेतों में काफी नमी रहती
2: जी
1: है।
2: जी
1: कश्यप जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीज का जो उपचार है, खेत की तैयारी तो होगी उसके बाद बीज का उपचार करना, क्योंकि बीज आपको खेत में लगाना, लेकिन बीज का उपचार किस तरह से करना है, क्या क्या सावधानियां हमारे किसानों को बरतनी होती है।
2: बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कोई भी चीज है, अगर हम बचपन से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी चीज है, तो शुरुआत में तो या बीटावैक्स या ब्लेविस्टिन, 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम दवाई की मात्रा जो है ठीक होती है। यानी अगर आप 20 ग्राम ब्लेविस्टिन या बीटावैक्स लेते हैं,
1: जी
2: तो 10 किलो बीज आप बड़े आराम से उसका उपचार कर सकते हैं। आपको उपचार करने की मैं आपको विधि बता दूंगा। आपने 20 ग्राम जो है ब्लेविस्टिन या बीटावैक्स डालना है और उसमें 10 किलो आपने बीज डालना है।
1: जी,
2: और आपने किसी प्लास्टिक का कट्टा, क्योंकि घड़े का प्रचलन तो है नहीं अब, प्लास्टिक का कट्टा लेना है, ऊपर से बांध देना है, और आपने उस बीज को अच्छी तरह से हलाना है और खूब इसको मला करके, और उसमें जब उसमें उसकी बीज की दवाई की परत बीज में बैठ जाती है तो आपका बीज जो है बुआई के लिए तैयार है।
1: जो बीज हमारे किसान भाइयों को लेना है उसको एक बोरी में पैक करके है, जो आपने बेवस्टिन की मात्रा बताई 20 ग्राम, और 10 किलो बीज जो है आपने जौ का लेना है उसमें पैक करके उसको खूब अच्छी तरह से हिलाने के बाद, उसके बाद जो है जो गैस है वो उसकी बनती रहेगी, उसमें
2: उसकी धूल होती है वो उसमें बैठ
1: जाएगी। और ये प्रक्रिया कितनी देर तक है, कितने घंटों तक हमारे किसानों को?
2: नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं है इसके, 2-4 मिनट आप इसकी मतलब इसको मिलाना है यार, उसमें जो है उसमें वो बीज,
1: यानी कम से कम 5 मिनट तक ही,
2: 5 मिनट 2-3 मिनट भी आप उसको हलाए तो वो भी उसकी धूल जो है उसमें बैठ जाती है। और उसमें फायदा ये है कि आने वाले टाइम में आगे जो कई तरह के रोग आते हैं फसलों में वो इससे वो नहीं आते।
1: आपने बीज की मात्रा भी बताई और जो खेत की तैयारी है उसकी बात भी, लेकिन अब बात आती है खाद और गोबर की। जब भी कोई फसल हम खेतों में लगाते हैं तो उसमें खाद और उर्वरक का होना बहुत ही जरूरी है, अगर खाद और उर्वरक नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खाद की जो मात्रा है किस तरह से देनी है, गोबर हो चाहे वो दूसरी खादें हो।
2: मैं आपको कहना चाहूंगा कि 10 से 15 क्विंटल अगर हमारे पास गली सड़ी गोबर की खाद है
1: जी,
2: तो सबसे बढ़िया है। और अगर हमारे पास, बाकी मैं और सिफारिश नहीं करूंगा, कुछ नहीं है, जो किसान होने के नाते अगर आप 10 किलो उसमें एक बीघा में 12-16 अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप बिजाई के इसमें उसको भी डाल दे। वैसे मैं ज्यादातर जो है गोबर खाद की बात करूंगा, क्योंकि जो एक ऐसी फसल है इसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 10 से 15 क्विंटल आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद डाले और जुताई के समय इसको अच्छी तरह से मिलाए और आपको इससे भरपूर फायदा मिलेगा।
1: ये आपका कहने का मतलब है कि हमारा जो किसान भाई है 10 से 15 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद खेतों में डाले, उसके बाद जो है वो खेतों को अच्छी तरह से उसमें मिलाए और उसके बाद जो है आप बिजाई करें। रही बात बिजाई की, तो बिजाई की विधि हमारे किसान जो है वो कई तरह से खेतों में बिजाई करते हैं। कुछ एक है जो छटा विधि के द्वारा भी करते हैं, कुछ एक जो है वो लाइनों में भी है जो इसकी बुआई करता है। तो आपकी क्या सिफारिश रहेगी, किस तरह से इसकी बुआई करनी चाहिए?
2: एक सिफारिश देना चाहूंगा एज ए फार्मर होने के नाते, बिजाई जो है हम अगर हमने अच्छी फसल लेनी है 100% अगर हमने उसका उत्पादन लेना है तो लाइन से आपको बिजाई करनी पड़ेगी। और मैं अंतर बताऊंगा आपको कि लगभग में 25-30 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और केरा विधि से आपने उसमें बिजाई करनी है। केरा विधि से आपने बिजाई करनी है और बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं डालना है और बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं रखना है। अगर आप छिटा विधि से बिजाई करते हैं तो उसका मैं आपको नुकसान बताऊं कि पक्षी क्या करते हैं, अगर उनको कहीं भी कोई खुला दाना मिल जाता है बीज का तो वो बाद में जब अंकुरित भी होती है फसल उनको भी उखाड़ देते हैं। जब हम उसको लाइन डो से बीजेंगे तो वो दाना बिल्कुल मिट्टी के नीचे दबा रहेगा। दूसरी बात इसमें यह होती है कि जब इसमें खरपतवार उगते हैं तो इसमें आप निदाई गुडाई बहुत ही आराम से कर सकते हैं और आप अपनी फसल को जो बढ़िया सुरक्षित रख सकते हैं और उससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी कृष्ण जी, अब बात आती है जब हमने खेत तैयार कर दिया, गोबर डाल दिया है और बीज भी हमने तय कर दिया कि कम से कम एक बीघा के लिए आपने 8-10 किलो बीज की आपने सिफारिश करी है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी किस्में है जो हम अपने खेतों में जो है जौ की लगा सकते हैं।
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाई हमारे जो है बहुत प्राचीन काल से कर रहा है। हमारे पास एक पुरानी ही किस्में जो जौ की है जिसका हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। एक बहुत अच्छी सुधरी हुई किस्में हमारे को इन्होंने जो हमारे टूटीकंडी की जो मधु जी है इन्होंने दी है। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का करनाल में कोई इंस्टीट्यूट है जो कि बीज तैयार करता है और वो एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे लिए फार्म के लिए भी देते हैं। उन्होंने ही हमारे को इस चीज के लिए प्रेरित किया। और सबसे बढ़िया जो है अगर उसकी उत्पादन की बात में करूं तो BHS 401 जौ की किस्म है
1: जी,
2: ये सबसे अच्छी किस्म है और इसकी बढ़वार भी अच्छी है।
1: BHS 400 जी,
2: इसकी जो बालियां हैं बहुत अच्छी होती है और इसका उत्पादन जो है लगभग में 2.5-3 क्विंटल, 2.5 क्विंटल तो होता ही है मगर हमारे पास
1: 2.5-3 क्विंटल प्रति बीघा
2: हम इसकी औसत उपज ले सकते हैं अगर हम पानी की सुविधा अच्छी दे और इसकी नुदाई उड़ाई अच्छी करें और उसमें खाद उर्वरक अच्छा हो तो ये इससे इतना अच्छी इसमें यील्ड मिल सकती है। और इसकी विशेषता मैं आपको ये बताऊं कि जब ये परिपक्वता के आधार पे होता है तो इसकी जो बालियां हैं वो ऐसे नीचे को झुक जाती है और इसका काफी अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है। इसका दाना भी बहुत मोटा है और इसमें अनाज की मात्रा भी भरपूर है।
1: यानी कि जो ये आपने BHS 400 बताई है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया मतलब यील्ड देने वाली किस्म।
1: और इसके अलावा दूसरी जो किस्म है वो
2: हाँ, इसके अलावा दूसरी किस्म है BHS 380
1: जी।
2: ये भी इसके दाने अगर आप कंपेरिजन करें तो दाने इसके बिल्कुल सेम है
1: जी
2: बिल्कुल आप पहचान ही नहीं सकते इनको कि भाई ये BHS 400 है या BHS 380 है। दाने इसके आप दाने से आप इसको पहचान नहीं सकते हैं, इसकी जो बालियां हैं आप इससे पहचान सकते हैं
1: जी।
2: तो इसकी जो उपज है BHS 380 जो किस्म है, इसकी उपज लगभग लगभग कोई 2 क्विंटल है। अगर थोड़ा अच्छी मेहनत करें तो थोड़ा इसको हम अधिक भी ले सकते हैं, मगर 2 क्विंटल की 1 बीघा में इसकी औसत उपज ली जा सकती है,
1: यानी कम से कम 2 क्विंटल जो है प्रति बीघा हमारा किसान ले सकता है।
2: अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि भी जब 3 क्विंटल या 2.5 क्विंटल कोई एक अन्य किस्म दे रही है तो हम इसको क्यों लगाएं?
1: जी बिल्कुल सही, जब BHS 400 है जो ज्यादा उपज दे रही है तो फिर हमारा किसान भाई इसको क्यों लगाए, क्योंकि इसकी औसत उपज कम आ रही है।
2: हाँ, इसकी मैं एक विशेषता बताऊं, जो BHS 380 है इसमें हमारे को 65 से 70 दिन में जो है हरे चारे के लिए पशुओं के लिए एक कटाई मिलती है
1: जी।
2: जब इसकी हमने सही समय पर लगा दिया तो 65 से 70 दिन के बीच में जो है इसमें एक कटाई हम ले सकते हैं,
1: यानी कि जिस वक्त हमारे किसानों के पास हरे
2: चारे की कमी रहती है बिल्कुल,
1: तो उस वक्त हरा चारा इससे उपलब्ध कर
2: इससे हो सकता है। अब आपको इसके 10 दिन के अंदर आपने इसकी कटाई करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म नहीं बनती फिर बाद में, ठीक है। अब आपने बोलना भाई 10 दिन में कहाँ खिलाएंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कटाई कर दी, जो पशुओं को हरा चारा खिलाना है वो खिला दिया, बाकी हमने इसको सुखा दिया और इसका पौष्टिक आहार पशुओं को जब जरूरत पड़े तब खिला सकते हैं, या हम इसका पशुओं के लिए साइलेज भी बना सकते हैं, यह इसका अतिरिक्त फायदा है।
1: और इसके अलावा और कौन सी जो की उन्नत किस्म है?
2: इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, वो हिमांद्री नाम से भी जानते हैं उसको, BHS 352 किस्म है, और इससे जो है नंगा जौ भी कहते हैं
1: जी।
2: ये कनक की भांति होता है और इसमें बालियां इसकी भी नीचे को झुकती है, और इसमें मतलब आप इसको ऐसे ढंग से नहीं पहचान सकते हैं, BHS 400 और BHS 352 इसके जो सीटे जो होते हैं, जो बालियां होती है, लगभग लगभग आप इसको पहचान नहीं सकते। जब आप इसको दाने निकालेंगे तो इसमें जो है रेशा नहीं है
1: जी,
2: ये नंगा जो है। और इसके लिए आप ये मैं इसके कह सकता हूँ कि आजकल मोटे अनाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उसकी डिमांड भी है, लोग भी चाहते हैं, तो ये खाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इन जौ का हम सत्तुओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जी बच्चों का आहार के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और हमारा

0: औद्योगिकरण जो है बियर या शराबों के लिए भी इसकी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड रहती है,
1: जी
0: और पशु चारे के लिए भी जौ जो है बहुत ही उपयुक्त है।
1: जी तो खेमचंद कश्यप जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को दी जौ की उन्नत काश्त के बारे में। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद शर्मा जी।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुना जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था जौ की उन्नत काश्त। इस विषय पे जानकारी दे रहे थे खेमचंद कश्यप और उनसे बातचीत कर रहे थे हरिकृष्ण शर्मा।
3: तो
2: तो
3: किसान भाइयों, आइए सुनते हैं एक और लोकगीत, शांति हेटा और साथियों की आवाज में।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना शांति हेटा और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। तो जयप्रकाश जी, अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं पे विराम दिया जाए। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: कार्यक्रम अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
3: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
2: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
3: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
2: टूटी हो सर्विस तार
3: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
2: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
3: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
2: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
3: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व उपाधियों से किया अलंकृत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा बनाए रखने और समर्पण भाव से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बताया सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी मेडिकल की सीटें बढ़ाने में सहयोग का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी। अनुसंधान कार्यों को मिलेगी मजबूती। और एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज बिलासपुर पहुंची। एम्स हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने संस्थान के मेधावी प्रशिक्षुओं को पदक व उपाधियों से अलंकृत किया। इस मौके पर कुल 92 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशे का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना होना चाहिए और डॉक्टरों की संवेदनशीलता व करुणापूर्ण व्यवहार बीमार व्यक्ति को हिम्मत देता है।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स बिलासपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण इस संस्थान की विशेष जिम्मेदारी बनती है और हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में बसी आबादी तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक बहुआयामी चुनौती है। राष्ट्रपति ने डिग्रियां व पदक हासिल करने वाले प्रशिक्षु डॉक्टरों को बधाई दी।
1: आप इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग, इसीलिए आपका कर्तव्य, आपका मेहनत, आपका कमिटमेंट, आपका हार्डवर्क आपके उत्तर पीढ़ी बाद में आएंगे और फॉलो करेंगे और आप वो एक ड्राइवर होंगे जिसके पदांग अनुसरण करके दूसरे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे।
0: दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बिलासपुर के विद्यार्थियों को इस प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन का विशेष अनुभव मिला है। उन्होंने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा और ब्रांड को बनाए रखने और मानवता के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार को केंद्र सरकार प्राथमिकता दे रही है और आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं।
2: मैं ये चाहूंगा कि आप हाई डेडिकेशन के साथ, ईश्वर की बहुत कृपा है कि आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एजुकेशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिस इज हाउ द सोसाइटी इज ट्राइंग टू गिव, सो इट इज ए प्रिविलेज टू यू। और बिलासपुर वालों को तो विशेष करके बधाई देना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक वातावरण में आपको पढ़ने का मौका मिला है। इसका हमको सदुपयोग करते हुए आप जहां भी जाएं एम्स का ब्रांड नेम जरूर बना करके रखें और उसको ध्यान में रखें। यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हाई क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, मानवता के लिए काम करेंगे।
0: इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अपने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी की सीटें और अधिक बढ़ाने में सहयोग का आग्रह किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और सांसद हर्ष महाजन भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्राधिकरण देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी।
3: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षो पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
4: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
5: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
4: स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई,
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। मुख्यमंत्री

0: ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
0: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को यूपीआई ने किस तरह साकार किया है। भारत में 25 अगस्त 2016 को यूपीआई को आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज देश के दूरदराज के गांवों में भी यूपीआई के माध्यम से लेन देन हो रहा है। देश में इस समय 55 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं।
3: भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं।
2: एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि चंबा में तैनात निगम के एक अधिकारी द्वारा की गई कथित वित्तीय अनियमितताओं और पिछले 3 महीनों से खातों में जीपीएफ जमा न होने से चालक व परिचालक खफा हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने पर 8 अक्टूबर से चंबा में चक्का जाम किया जाएगा और यदि फिर भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बसें नहीं चलाई जाएंगी।
4: चंबा में हमने मुद्दा उठाया तो इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। पहले हम चंबा को 8 तारीख बंद करेंगे। अगर 8 तारीख चंबा बंद करने से भी कुछ नहीं होता है तो पूरे हिमाचल प्रदेश को 9 तारीख से हम बंद करेंगे। या तो पॉलिसी हमारे लिए भी वैसी बनाओ या तो उस एसओ को टर्मिनेट करो, तब हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, हमारे कर्मचारियों को जीपीएफ नहीं मिल रहा। ऐसा ना हो कि हमें एक नोटिस आपको और देना पड़े।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व उपाधियों से किया अलंकृत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा बनाए रखने और समर्पण भाव से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बताया सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी मेडिकल की सीटें बढ़ाने में सहयोग का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी। अनुसंधान कार्यों को मिलेगी मजबूती। और एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने का लिया निर्णय। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
5: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
6: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
7: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीखी है असली जायदाद।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। ये आकर

0: आकाशवाणी शिमला है। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना सोलन के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 पद तथा सहायिकाओं के 15 पद भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन में 10 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संबंधित आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में दिनांक 17 अक्टूबर 2026 तक जमा करवाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10.2 या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय मूलतः 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार नायब तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपंगता संबंधी प्रमाण पत्र जो कि मेडिकल बोर्ड से जारी किया हो बशर्ते विकलांगता इस प्रकार की ना हो जिससे आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती हो। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से भारत की माननीय प्रधान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में बिलासपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित दीक्षांत समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
0: ये प्रसारण आकाशवाणी एफएम शिमला हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुना जा सकता है।
2: आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में स्थित जिला बिलासपुर के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवमयी दिन रहा जब यहां स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, माननीय राज्यसभा सांसद एवं एम्स बिलासपुर इंस्टीट्यूट बॉडी के सदस्य श्री हर्ष महाजन, एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एन के अरोड़ा, संस्थान के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर दलजीत सिंह और चिकित्सा जगत की कई प्रमुख हस्तियां समारोह में शामिल हुईं। इस प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की गईं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा,
3: माँ नैना देवी की इस पावन क्षेत्र में स्थापित एम्स बिलासपुर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। बिलासपुर का ये क्षेत्र वीरों का धरती है। यहाँ के वीर सुरपुतों ने भारतीय सशस्त्र बलों से सेवा करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अपना योगदान दिया है। उनके साहस समर्पण और देश सेवा की भावना को मैं नमन करती हूँ। देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर सुपुतों को मैं श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एम्स बिलासपुर अपना पहला दीक्षांत समारोह मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं इस संस्थान के निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों की सराहना करना चाहूँगी। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाली सभी

0: विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटे और बेटियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। मैं उन माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को यहाँ तो पहुँचाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग, इसीलिए आपका हार्ड वर्क आपके उत्तर पीढ़ी जो बाद में आएंगे वो फॉलो करेंगे और आप वो एक ड्राइवर होंगे जिसके पदांग अनुसरण करके दूसरे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे और इस एरिया का नाम रोशन करेंगे। आपके लिए एक गर्व का विषय है, इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ा हुए है। इस संस्थान की पहचान और विरासत के निर्माण का शुभारंभ करने का कर्तव्य आपको निभाना है। भविष्य में आपके व्यवहार और कार्य से इस संस्थान की प्रतिष्ठा निर्मित होगी। आपका सदैव प्रयास होना चाहिए कि आपके आचरण और कार्य से इस संस्थान का नाम बढ़े। आप यहाँ के भावी विद्यार्थियों के लिए आदर्श बने। आप लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन को करियर के रूप में चुना गया है। हमारे यहाँ शिक्षक और डॉक्टर को भगवान मानते हैं। शिक्षा ऐसे एक रास्ता है, ज्ञान देते हैं, शिक्षा विकास का कुंजी होता है। शिक्षा नहीं, आज देश जैसे विकास के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं वो केवल शिक्षा के बल से। और डॉक्टरों को कहते हैं स्वास्थ्य ही संपदा, आपके पास धन दौलत जेवर जो भी होगा लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप विकास नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए हमारे यहाँ डॉक्टर को और टीचर, प्राइमरी टीचर से लेकर प्रोफेसर तक सभी को भगवान मानते हैं।
1: डॉक्टर्स के महान प्रोफेशन का जिक्र करते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
0: इस प्रोफेशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मानवता की सेवा करना। जब एक बीमार व्यक्ति चिकित्सकों के पास आता है तो वो बीमारी से जुड़े डर और अनिश्चितता के साथ उम्मीद लेकर भी आता है और जब अपने पेशेंट को लेकर आते हैं और इस परिस्थिति में आते हैं कि मेरे पास जो भी है डॉक्टर मेरे एक पेशेंट को बचा लो, इस परिस्थिति मानसिक स्थिति से आते हैं, इसलिए भरोसा करके आते हैं। आपका ज्ञान बीमारी का पहचान करता है, आपका कौशल इस बीमारी का इलाज करता है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता और करुणापूर्ण व्यवहार बीमारी व्यक्ति को हिम्मत देता है। इसलिए आप अपने प्रोफेशन में श्रेष्ठ बनने के साथ साथ संवेदनशीलता और करुणा को भी अपनाना चाहिए। आप इस सुंदर भरा इस एरिया में पढ़ते हैं, इस पहाड़ों के साथ, इस जंगल के साथ, इस रास्ता के साथ, इस परिस्थिति के साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं भी उसी एरिया से आती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है, मुझे लगता है ये उम्मीद आपके पास नहीं, मैं नहीं करूँगी, उसी एरिया में डॉक्टर जाना नहीं चाहते, कहते इतने दूर इतने घने जंगल में कौन जाता है, लेकिन मैं जरूर विश्वास करूँगी, मैं जरूर उम्मीद रखूँगी कि आप कभी इनकार नहीं करेंगे, सेवा करेंगे जरूर, क्योंकि आप चाहते तो केवल डॉक्टर नहीं बनते, आप अपने आर्थिक उन्नति करना चाहते तो दूसरा प्रोफेशन को आप चुनते, लेकिन आज आप इसी दिशा में कदम बढ़ाए। मिस आपके पास सेवा भाव है, कहा जाता है कि सेवा में ही मेवा है, सेवा में ही संतुष्टता है, आर्थिक उन्नति होने से यहीं पे रह जाएगा लेकिन आपके पास सेवा आपके साथ जाएगा। इसीलिए मैं जरूर आपके साथ उम्मीद रखूंगी, आप कभी उसी जगह पे एक साल दो साल से ही इतने दिन ही से ही आप जरूर जाएंगे, उनका सेवा करेंगे।
1: स्थानीय सौंदर्य की भी माननीय राष्ट्रपति ने भूरी भूरी प्रशंसा की और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
0: संस्थागत रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रभावी साबित होगा क्योंकि इस एरिया में है, लेकिन यहाँ के बच्चे इतने विश्वास के साथ, इतने लोगों के साथ पढ़ाई करते हैं और सेवा के लिए तैयार होते हैं। इससे लोग आधी अधूरी और भ्रामक जानकारी से बचेंगे और स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि इस सुंदर पहाड़ को आप प्यार करना सीखे हैं, इस एरिया के लोगों को आप प्यार करना सीखे हैं। आप प्यार के साथ साथ, आपके मन में प्यार के साथ साथ सेवा मन भी है, इसीलिए आप डॉक्टर बने। मैं जरूर उम्मीद रखूंगी कि आप बच्चे जो आगे जाके केवल सेवा, सेवा ही उद्देश्य होना चाहिए।
1: एम्स की उपलब्धियों एवं उद्देश्यों के बारे में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
0: देवी और स्वजन, न्यूनतम लागत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा एम्स की पहचान है। देशवासियों के लिए एम्स का मतलब होता है देश के सबसे योग्य चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा। एम्स पर इस भरोसे का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें और अधिक संस्था में मेधावी विद्यार्थी उच्च कोटि को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा कर सकें। इस उद्देश्य के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक एम्स की स्थापना की गई है। मुझे बताया गया है कि एम्स बिलासपुर में पिछले 3 वर्षों में करीब 12 लाख आउट पेशेंट्स ने और 1 लाख से अधिक इन पेशेंट्स ने चिकित्सा सेवा लाभ उठाए हैं। एम्स बिलासपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण आपकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में बसी आबादी तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक बहुआयामी चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है आपका जो मनबल, आपका जो कोशिश, आपका जो भावना, मुझे लगता है ये चुनौती को सामना करके उन तक सेवा पहुंचाएंगे। इस चुनौतियों पर विजय पाने के लिए एम्स बिलासपुर को एडवांस्ड टेरिटरी हेल्थ केयर का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसके साथ ही इसे टेलीमेडिसिन, दूर के क्षेत्रों में विशेषज्ञों परामर्श, चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के प्रयोग में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत बनाना है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान के नीति निर्माता इस दिशा में निरंतर प्रयत्न रहेंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माननीय राष्ट्रपति ने कहा,
0: देवियों और स्वजनों, सामान्य लोगों के लिए किसी बड़ी बीमारी की स्थिति में चिकित्सा का खर्च उठाना बहुत भारी पड़ता है। इलाज करने में लोगों के घर जमीन तक बिक जाती है। भारत सरकार द्वारा कमजोर वर्गों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ये जो संदेश चिकित्सा बीमा दिया जाता है, लेकिन आज भी बहुत लोगों के पास ये जो संदेश पहुंचा नहीं, जरूरतमंदों के पास पहुंचाना, यहाँ के मैं मुख्यमंत्री को मैं आग्रह करना चाहूँगी, दूर दराज के लोगों को भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना के तहत प्रोवाइड करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस योजना के तहत अब तो 13 करोड़ से अधिक हॉस्पिटलाइजेशन में लोगों को 2 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा की बचत हुई है। देशवासियों को कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की बढ़ती कीमत मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक गंभीर चुनौती है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का विकास एम्स जैसे अग्रणी संस्थानों के लिए चुनौती के भी और अवसर भी है। आपके प्रयास से हमारे देशवासी स्वस्थ बने रहेंगे और पूरी क्षमता से देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे।
1: स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे परिवर्तनों का जिक्र भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा,
0: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च की इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाई। ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसे

0: हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने समारोह में पधारने पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त करते हुए कहा,
1: आज हिमाचल प्रदेश के अत्यंत गौरव और ऐतिहासिक महत्व का दिन है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी जो उपस्थिति है, उसने एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह के इस अवसर को और भी विशेष बना दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का हिमाचल प्रदेश पधारने और ऐसे ऐतिहासिक समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। आज हम सभी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में इस सब ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, उनका समर्पण, उनकी उपलब्धियों को उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और संकल्प से हिमाचल प्रदेश को एम्स बिलासपुर जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा की जो प्रतिष्ठित संस्था प्राप्त हुई है। ये संस्थान न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों तक दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं पूरे सम्मान के साथ 5 अक्टूबर 2022 को एम्स बिलासपुर को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रेरणादायी शब्द थे उनको भी स्मरण करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र रक्षा में हमेशा से हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है और एम्स के बाद यही हिमाचल प्रदेश जीवन रक्षा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री जी के ये शब्द आज इस संस्थान की उपलब्धियों और यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे भावी चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज का ये जो प्रथम दीक्षांत समारोह उस संकल्प की दिशा में एम्स बिलासपुर की महत्वपूर्ण प्रगति और उपलब्धि का प्रमाण है। वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में गंभीर बीमारी का अर्थ अक्सर चंडीगढ़ या उसके आगे पीछे किसी बड़े चिकित्सा केंद्र तक लंबी यात्रा करना होता था। इस यात्रा में परिवारों को अपने खेत, अपने व्यवसाय, अपने घर और अपने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता था। आज एम्स बिलासपुर केवल रोगियों के उपचार का संस्थान ही नहीं है बल्कि ये देश और समाज की सेवा के लिए प्रशिक्षित और सक्षम चिकित्सकों की नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। आज यहाँ से निकलने वाले ये युवा चिकित्सक अपने साथ इस संस्थान का जो ज्ञान है, प्रशिक्षण है, संस्कार है, सेवा है, उस भाव को लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों में मानवता की सेवा करेंगे। मैं एम्स बिलासपुर के संकाय सदस्यों, चिकित्सकों, अधिकारियों और समस्त कर्मचारियों के प्रति भी अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अल्प अवधि में इस संस्थान को एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान तीनों क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको प्राप्त होने वाली उपाधि केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि ये समाज और राष्ट्र के प्रति एक दायित्व को भी आगे ले जाता है, उसका प्रतीक है। आप सभी आज जीवन के एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आपके परिवारों, आपके क्षेत्र के लोगों, समाज, प्रदेश और देश के आपसे बहुत अपेक्षाएं रहेंगी। आपने इस संस्थान में प्रवेश केवल एक पेशे के रूप में चिकित्सा को अपनाने के लिए नहीं किया है बल्कि स्वास्थ्य सेवा और मानवता की सेवा के लिए व्यापक उद्देश्य के साथ किया है। इसलिए अपने पेशेवर जीवन में आमजन और विशेष करके समाज के जरूरतमंद लोगों के सदैव कार्य अपने कार्य के केंद्र में आप रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चिकित्सा का क्षेत्र केवल विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र नहीं है, ये मानवीय संवेदना और विश्वास का भी क्षेत्र है। एक चिकित्सक के लिए रोगी केवल केस नहीं होता बल्कि एक परिवार की आशा और विश्वास रहता है। इस विश्वास को आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुझे विश्वास है कि एम्स बिलासपुर के ये प्रथम स्नातक देश के विभिन्न क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान और सेवा भाव से नई पहचान बनाएंगे और विकसित भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को एम्स बिलासपुर के प्रथम स्नातक बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

0: आपके उज्जवल भविष्य, सफल और सेवाभावी भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और आप अपने ज्ञान एवं सेवा से राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं।
1: हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा,
2: यह हमारे लिए गौरव और हर्ष का अवसर है कि देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी आज हिमाचल प्रदेश पधारी हैं। मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। प्रदेश के कण कण में देवी देवताओं का वास है। हमारे मंदिर, लोक परंपराएं और सदियों पुरानी संस्कृति विरासत हिमाचल को एक खास पहचान प्रदान करती है। आज आप बिलासपुर की पावन धरती पर आए हैं। हमारे यहाँ मेहमान केवल मेहमान नहीं होते बल्कि उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। हमारी इस परंपरा की मूल भावना अतिथि देवो भाव है। इस भावना के साथ प्रदेश की समस्त जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारा मकसद मरीजों को अपने ही राज्य में बेहतर और आधुनिक उपचार उपलब्ध कराना है। हमारी सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, हाई एंड एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध करवा चुकी है। मेडिकल कॉलेज में इन आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। हमारा प्रयास है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज केवल बड़े शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। मैं सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स का, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस रोबोटिक सर्जन के लिए हम पहले विज्ञापन देकर 5 लाख रुपए की नौकरी का ऑफर देने जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज जो सरकारी क्षेत्र में हिमाचल में हैं उनमें तकरीबन 500 के करीब रोबोटिक सर्जन सभी मेडिकल कॉलेज में हम पूरी कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के आम और गरीब परिवारों को मिल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह डायग्नोस्टिक सुविधाओं को भी मजबूत कर रहे हैं ताकि बीमारियों के समय पर सटीक पहचान हो सके और मरीजों को सही उपचार उपलब्ध करवा सके। कैंसर के इलाज और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के विस्तार पर भी हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े। पहले हिमाचल प्रदेश के मेडिकल की केवल 270 PG सीटें थी। मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से चाहूँगा कि हमने 320 अतिरिक्त PG सीटें बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जगत प्रसाद आज हमारे बीच हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका अपना घर है और आपके पास हम जब भी जाते हैं आपसे हमें हमेशा किसी ना किसी रूप में दिशा निर्देश भी मिलते हैं और मार्गदर्शन भी मिलता है। मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन प्रदेश के लोगों को अवश्य मिलेगा। हमारी सरकार ने एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल स्थापित करने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में पैरामेडिकल और अलाइड कोर्सेज शुरू किया है जो कि उत्तर भारत का पहला अलाइड कोर्सेज है और पिछले वर्ष हमने IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में जितने भी लाइट कोर्सेज थे उनको हमने स्टार्ट करवा दिया, जिसका पहला बैच 2028 में आने वाला है। क्योंकि रेडियोग्राफर्स की कमी है, OT ऑपरेशन स्टेटर की कमी है, इन सब चीज़ों की कमी है, तो हमारा प्रयास है कि इन सब चीज़ों को हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की जाए और पहला उत्तर भारत का अलाइड कॉलेज हमने हमीरपुर जिला में शुरू किया है जिसमें 244 सीटों का इंटेक अभी हम करने जा रहे हैं। ये सभी कोशिशें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और हिमाचल के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा अपने ही राज्य में उपलब्ध करवाने की दिशा में किए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का आधार मानती है। हमारा विश्वास है कि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और गुणात्मक शिक्षा ही एक आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल की नींव हो सकती है। अतः मैं उपाधि प्राप्त स्नातक के जो MBBS या PG डिग्री की है आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस उद्देश्य के साथ डिग्री आपको एक पहचान दे सकती है लेकिन मानव की सेवा आपको संतुष्टि दे सकती है, यही आपका मूल मंत्र डॉक्टर्स का होना चाहिए। मैं एक बार फिर से हिमाचल की समस्त जनता की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करता हूँ।
1: माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा उर्वरक और रसायन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने समारोह में अपने उद्गार व्यक्त

0: करते हुए कहा।
1: ये बहुत ही हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस ऐतिहासिक दिन में इसका चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिल रहा है और इस ऐतिहासिक घड़ी के साथ अपने आप को सामंजस्य करते हुए जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर आई हैं। मैं अपनी ओर से, एम्स परिवार की ओर से और हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बिलासपुर एम्स अपने आप में बहुत कहा जाए तो भाग्यशाली भी है। भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि 2018 में इसका शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिकॉर्ड टाइम में कोविड के होने के बावजूद 4 वर्षों के अंदर तैयार हुआ और उसका भी उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ और आज वो ऐतिहासिक घड़ी है जब प्रथम दीक्षांत समारोह भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा हो रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी रुचि जो शिक्षा के प्रति और जो स्वास्थ्य के प्रति समर्पण आपने दिखाया है वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। सभी संस्थानों में जो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान हैं, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों, फिर चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हों, आपका आशीर्वाद सभी संस्थानों को हमेशा मिलता रहा है। आज हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है कि आज उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका डेडिकेशन, उनको आज डिग्री प्राप्त हो रही है और इसके साथ साथ जो उनका कमिटमेंट है, हार्डवर्क है, सर्विस के प्रति जो समर्पण है, उसको आज एक तरीके से समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं उन अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनके लगन और जिनकी प्रेरणा के द्वारा आज जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जो समय समय पर ताकत मिली है, इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं फैकल्टी के सदस्यों को देता हूँ जिन्होंने गढ़ गढ़ कर विद्यार्थियों को बनाने का जो काम किया है, यह जो प्राउड मोमेंट है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि एम्स बिलासपुर किस तरीके से हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च और हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अलग, ट्राइबल्स के लिए अलग, डिस्टेंट रहने वाले हैं उनके लिए अलग, हर तरीके से इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं अपनी खुशी इजहार करता हूँ। 776 आज बेड्स हो गए हैं। इसका टारगेट 750 बेड्स था, वी हैव क्रॉस द टारगेट्स। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 26 स्पेशलिटीज, 15 सुपर स्पेशलिटीज और परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स, कार्डियक कैथ लैब इंटरवेंशंस, न्यूरोसर्जरीज, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कैंसर केयर और हमारे रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट फुल्ली फंक्शनल है। ये सिर्फ पिछले 5 साल के अंदर हुआ है। इसके लिए मैं एम्स परिवार और फैकल्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इसको काम करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने पिछले 4 सालों में आपकी ओपीडी 12 लाख क्रॉस कर चुकी है और आपकी आईपीडी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। दिस शोज दैट किस गति के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट को बनने में 10 साल कम से कम लगते हैं, फैकल्टीज को खड़े होने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों की जो गति है और जिस तीव्र गति से आप फैकल्टी के लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में आप किसी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ कम्पीट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। एक बात मैं कॉन्वोकेशन में हमेशा कहता हूँ, वो मैं ज़रूर कहूँगा। हम लोगों ने सुना है कि एजुकेशन इज अवर बर्थ राइट। प्राइमरी एजुकेशन बर्थ राइट हो सकती है, सेकेंडरी एजुकेशन बर्थ राइट हो सकती है, स्कूल एजुकेशन बर्थ राइट हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन बर्थ राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है। अभी अभी पिछले साल के कैबिनेट में 2025 में प्रधानमंत्री जी ने 10,000 MBBS सीट्स और PG सीट्स के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रति सीट के हिसाब से 2029 तक 15,000 करोड़ रुपीज दिए गए। दिस इज

0: दिस सोसाइटी इज ट्राइंग टू गिव, सो इट इज ए प्रिविलेज टू यू. और मैं ये चाहूंगा कि आप हाई डेडिकेशन के साथ, ईश्वर की बहुत कृपा है कि आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एजुकेशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और बिलासपुर वालों को तो विशेष करके बधाई देना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक वातावरण में आपको पढ़ने का मौका मिला है. इसका हमको सदुपयोग करते हुए आप जहां भी जाएं एम्स का ब्रांड नेम जरूर बना करके रखें और उसको ध्यान में रखें. यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि आप हाई क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, मानवता के लिए काम करेंगे, और महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में जो हमें दिशा दी जाएगी उसको हम पूरा करेंगे. इस विश्वास के साथ आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इस ऐतिहासिक घड़ी का पल के साथ जुड़ने का मौका मिला इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद और बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: तो ये थी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह की रेडियो रिपोर्ट. क्षेत्र संकलन अनुज, तकनीकी सहयोग महेंद्रपाल सैनी, सुमन कांत और वेद प्रकाश, विशेष सहयोग सपना ठाकुर, स्वर संपादन एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर हुकम शर्मा.
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर. रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत.

कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत लीजिए सुनिए हकीकत फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, संगीत मदन मोहन का और बोल हैं कैफी आज़मी के।

0: वेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जागृति फिल्म से ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, संगीत हेमंत कुमार का, गीतकार प्रदीप।

इसी गीत के साथ देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।

0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं की सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
4: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
2: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
5: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
1: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of five-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
7: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%,
8: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7 to 8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
7: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
6: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
7: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
8: A 10,000 crore rupees MSME growth fund will be established to provide long-term equity capital to MSMEs with strong growth potential. The fund will be operated with the support of the Ministry of MSME and the Ministry of Finance and will be professionally managed to ensure effective allocation of capital. The fund will place a strong emphasis on manufacturing-focused MSMEs with nearly half of its corpus

आज के संगीत के इस सफर में हम याद कर रहे हैं उस सुरीली आवाज को जिसने गजल को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। जी हाँ, गजल सम्राट जगजीत सिंह।

जी श्रोताओ, जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ। उनका मूल नाम जगमोहन सिंह था। बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर था। उन्होंने पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। संगीत के क्षेत्र में बेहतर अवसरों की तलाश में वे 1965 में मुंबई आए। शुरुआत में उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाए और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी पत्नी चित्रा सिंह के साथ उनकी जोड़ी ने गजल संगीत को एक नई लोकप्रियता दी।

मशहूर गायक जगजीत सिंह की आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुन रहे हैं। जगजीत सिंह की खासियत थी कि वो गजल के भावों को बेहद सरल, मधुर और आत्मीय अंदाज में श्रोताओं तक पहुंचाते थे। उनकी आवाज में प्रेम, विरह, याद, जीवन और संवेदनाओं की गहराई महसूस होती थी। इसी कारण उन्हें प्यार से गजल किंग कहा गया है।

श्रोताओं, उनकी चर्चित रचनाओं की अगर बात करें तो फिल्म अर्थ, साथ साथ प्रेम गीत का संगीत विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने टीवी धारावाहिक मिर्जा गालिब के लिए भी संगीत और गायन किया। संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी आवाज और गजलें आज भी संगीत प्रेमियों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं।

श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे दिल में उतर जाती हैं। जगजीत सिंह की आवाज भी एक ऐसी ही आवाज थी जो आज भी उनकी गजलों के साथ हमारे बीच जीवित है।

इसी खूबसूरत नगमे के साथ आज का ये कार्यक्रम एक ही कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी।

कार्यक्रम धाम गीता दी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं भुवनेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

भी आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीता दी और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत जिसे गाया है बिमला चौहान और साथियों ने।

विशाल पठानिया और इस साथियों का गाया ये लोकगीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीतादि और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 10:06 और 20 सेकेंड और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना कौशल्या देवी की गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अमरनाथ शर्मा का गाया ये लोकगीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत। और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म हाथ की सफाई के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

लता मंगेशकर और अमित कुमार जी के युगल स्वरों में अभी आपने ये गीत सुना। राजेश रोशन का संगीत था, बोलते इंदिवर की और ये फिल्म थी आखिर क्यों। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए क्रांति फिल्म से ये गीत।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
1: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
2: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises. Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Sevatirth today, ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from tomorrow till 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
5: एवरीडे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू विल रिसीव द मैंडेट इफ यू फेल टू गेट द पीपल्स मैंडेट एंड देन अब्यूज द इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड
4: और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे।
2: Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to the headquarters of the Election Commission of India in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Later, leader of opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with party leader Priyanka Gandhi Vadra and other supporters, entered Akashvani Bhavan and staged a protest on the premises. With regard to today's opposition protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m., it received information from Delhi Police that a delegation of members of Parliament led by the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, wants to meet the Commission and submit a memorandum. The Election Commission considered this request unusual, which could not be accepted. Voting concluded peacefully for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with a Lok Sabha seat in Assam. Polling took place for Madurandagam and Dharmapuram seats in Tamil Nadu, Tattanjavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. Voting was also held for Nagaon Lok Sabha seat in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Shreyas Iyer's unbeaten 102 and debutant Naman Dheer's 3-wicket haul powered India to an 8-wicket win over the West Indies in the opening T20 in Lucknow tonight. And that is the end of this news bulletin.
6: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।